मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 28वीं तिथि यानी 14 जून सन 2026 सुबह के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारे आज के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हिंदी समाचार के बाद आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
2: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन सम्पन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है, जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1-800-315-7008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3-1

0: दिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनते हैं आज का चिंतन।

प्रतिदिन हमें नेक कर्म करने चाहिए और प्रभु के दिखाए सद्मार्ग पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे चिंतन, ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना।

असत्य और अधर्म का अंत करना ही प्रभु श्री राम के जन्म का उद्देश्य था। उनके आचरण और आदर्श जीवन का सभी को अनुकरण करना चाहिए। प्रभु श्री भगवान ही इस भवसागर से हमारी नैया पार करेंगे।

हे महादेव, हे नीलकंठ, आप महाकल्याणकारी और दयावान हैं। आप अपने भक्तों का दुख पल भर में ही हर लेते हैं, हर विपत्ति को दूर कर सद्मार्ग दिखाते हैं। आप स्वयं भोले भंडारी हैं, अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। हे शिव शंभु, आपकी जय हो।

श्रोताओं, कर्म योगेश्वर प्रभु श्री कृष्ण के जन्म के समय भी परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, लेकिन उन्होंने जीवन में संघर्ष, लगन और दूरदर्शिता से अपनी राह में आने वाले सभी संकटों को दूर किया और हर जगह विजय प्राप्त की। उनके जीवन से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए और आशावादी रहना चाहिए। चाहे जीवन किसी भी गति से किसी भी पथ पर ले जाए, हमें कर्म के महत्व को आत्मसात कर लेना चाहिए।

हे जगत जननी माँ, ये समस्त संसार आपका परिवार है, हम सब आपकी ही संतान हैं। इस प्रातः की शांत बेला में आपका ध्यान अंतर्मन को आनंदित कर देता है, नेक कर्म के लिए प्रोत्साहित करता है और जीवन को अपार शक्ति प्रदान करता है।

शोक संताप और ग्लानि के सागर में डूबते उतराते सुमंत्र ने सारा दिन अयोध्या नगरी के बाहर एक पेड़ की छांव में बैठकर बिताया। जब शाम का अंधकार घिरने लगा तो उन्होंने नगर में प्रवेश किया। महामंत्री का अकेले वापस आना सुनकर रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल प्रेतों के निवास स्थल जैसे लगने लगे। सुमंत्र को मौन तथा व्याकुल देखकर रानी कौशल्या उन्हें अपने महल में लिवा ले गईं। वहां का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक है। आभूषण रहित मलिन राजा दशरथ धरती पर पड़े हैं। वाणी के नाम पर हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी मात्र यही शब्द सुनाई पड़ते हैं। सुमंत्र ने जय जीव कहकर प्रणाम किया तो राजा ने उठकर उन्हें हृदय से लगा लिया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि की बातें।
1: किसान बहनों भाइयों, राम राम। कृषि की बातों में जिक्र करेंगे दलहनी फसलों की देखभाल। किसान भाइयों, दलहनी फसलें बार बार इस बात में कराया जाए कि वह जो हम परंपरागत खेती करा हैं उसकी बजाय अगर हमें फसल चक्र अपना लें, और फसल चक्र में अगर हम दलहनी फसलों की बिजाई कर लें तो हमारी ज़मीन की सेहत सवरे है, ज़मीन में पोषक तत्व आए हैं, क्योंकि ये जो फली वाली फसलें हैं ये ज़मीन में नाइट्रोजन छोड़ देती है। तो एक तो फसल चक्र में हमारा जो खरपतवार है वो ख़त्म हुए हैं, और दूसरी बात ये है कि जो ज़मीन की सेहत सुधर है, ज़मीन फुलकाली हो है उपजाऊ है। तो इसलिए हमने फसल चक्र अपनाना चाहिए, और फसल चक्र में दलहनी फसलों को तो ज़रूर अपनाना चाहिए भाई। हाँ, इसमें जो फसलों में हैं उनमें मूंग है, उड़द है, लोबिया है, मोठ है, अरहर है, ये सारी की सारी फसलें हैं, इनमें से हम किसी की बिजाई कर सकें। मूंग में भाइयों जिस तरह है मुस्कान है, सत्या है, बसंती है, MH 421 है, MH 438 है। उड़द में है UH 1 है, T9 है, लोबिया में है FS 68 है, HS 46 है, और मोठ में है RMO 40 है, RMO 257 है, RMO 225 है, RMO 435 है, और काजरी मोठ है, ये राजस्थान के बहुत बढ़िया किस्म है। इनमें से कोई सी भी हमें बीज लेकर और उसकी बिजाई कर सकें। हाँ, इसमें एक बात का ध्यान रखना है भाइयों, हमने जिसके मूंग और उड़द में तो 6 से 8 किलो बीज लेना है, लोबिया का हमने 12 किलो लेना है, अरहर का हमने 5 से 6 किलो लेना है, मोठ का 4 से 5 किलो बीज लेना है। और बीज का उपचार जरूर करें, लाइना में बिजाई करें, ये ना चीटा देकर बिजाई नहीं करें, लाइना में बिजाई करनी हमने, और लाइन टू लाइन का फासला भी अपने फसल के अनुसार उसमें ज़रूर रखें। खास कर ये देखा गया है कि एक हमें इसमें राइजोबीम का टीका लगा लेना, वो सबसे बढ़िया रहे भाई। राइजोबीम का टीका फसल के अनुसार लग गया है, जिस तरह मान लिया मूंग का है तो मूंग के नाम से लेना है, उड़द का है तो उड़द के नाम से लेना, लोबिया का है लोबिया के नाम से लेना है, और अरहर का है तो अरहर के नाम से लेना है। यानी जो ये राइजोबीम का टीका उसके फसल के नाम से आता है। पहले हमने जो भी बीज के उपचार करना, सारे उपचार करके उसके सबसे बाद में हमने ये राइजोबीम का टीका लगाना है। उसका टीका बारे में आप जानो हो कि वह उसमें ये लिक्विड माव है। हाँ, इसका ये भी ध्यान रखें कि जब भी आप लाओ इसका टीका, उसने पहले ना तो खोलें, एक गर्म जगह पर ना रखें, ठंडी जगह पर रखें, और जब खोल दिया ना, खोलने के बाद तुरंत उसका उपचार हमने कर देना, यानी उसके बाद फिर ये जीवाणु उसमें ख़त्म हो जाते हैं अगर लंबे समय तक हमने इसको खुला रख लिया था। तो इस ओर ध्यान रखना, बाद में सबसे आखिर में सारे उपचार करने के बाद में इसका उपचार कर देना, उसके बीज के ऊपर एक ये बखेर के नहीं, और फिर उसके बाद उसका हाथ इसमें मिला देना है। पहले उसका जिस तरह गुड़ का पानी है, 85 ग्राम गुड़ है, और उसमें पाइया पानी लेकर नहीं, और फिर आप उसमें क्या करना, उसका थोड़ा गिल्ला कर लेना अपना सारा बीज। उसके बाद उसको जो भी जो टीका ले रखा है, टीका उसके ऊपर रखना है, और अपने हाथ हाथ उसमें सारे में मिला देना, और फिर थोड़ा फरकाला हो जाए, फरस पर या तरपाल पर हमने करना, फिर उसके बाद उसकी लाइना में बिजाई करनी। खादा का इसमें ये भाइयों ध्यान रखना है कि वह खाद बीज जितने बताया जाए उतने बढ़िया है, नहीं तो कई बार क्या होता है कि हमें अंधाधुंध खादा प्रयोग कर लें, वो भी नहीं है। एक तो ये नाइट्रोजन इसमें वैसे ही ज़्यादा हो है, और नाइट्रोजन खाद का तो इसमें प्रयोग करना ही नहीं है। अरहर का हमने ये रखना है कि वह 2 खूड अरहर के काट के, और उसमें मूँग और उड़द की हम बिजाई कर सकें, उस एक लाइन उसकी काट दें तो ये और भी बढ़िया, यानी हमारा दोहरा फायदा इसमें हो सके। 2 खूड तो उसके अरहर के काट दें, फिर 1 खूड उसमें मूंग का काट दें या उड़द का काट दें, ये छोटी फसल है, ये अच्छी पैदावार हमने दे देगी। यानी किले में हमने 1 एकड़ में उड़द की भी हमने और मूंग की भी मिलेगी, और साथ में अरहर की भी मिल जाएगी। हाँ, जहाँ ये देखें कि वह जो अरहर में पिछले बीमारी आई हो तो उसमें खास कर ये देख लें कि वह उस खेत में इसकी बिजाई ना करें तो सबसे बढ़िया रहेगा। तो भाइयों, जय हम ये देख लें कि वह जुन सी भी फसल हमने लगानी है, ये देखें उसका बीज भरोसे जगह से लाओ, उसका बीज का उपचार करें, राइजोबीम का टीका लगाओ, और फिर उसके बाद लाइन में बिजाई करें। तो इन मोटी मोटी बातों भाइयों हम ध्यान रखेंगे, तो दलहनी फसलों की देखभाल करके अच्छी पैदावार ले लेंगे।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि की बातें, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे हिंदी समाचार और फिर आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।
2: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका साधना शर्मा। इदानीं वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस देशस्य नीस नगरं संप्राप्तवान्। भारतीय प्रवासी जनैः तस्य हार्दिकं स्वागतं कृतम्। भारतस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोदयः रात्रौ फ्रांस स्लोवाकिया देशयोः यात्रायाः प्रथमचरणे नीस नगरं संप्राप्तवान्। तत्र फ्रांस देशस्य वरिष्ठाधिकारिभिः तस्य हार्दिकं स्वागतं कृतम्। तत्र होटल नेग्रेस्को स्थले भारतीय प्रवासी जनैः तेषां हार्दिकं स्वागतं कृतम्। प्रधानमंत्री स्वीय यात्रा काले फ्रांस राष्ट्रपतिना सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति तथा विविधेषु कार्यक्रमेषु सहभागित्वं वहिष्यति। फ्रांस देशस्य नीस नगरे प्रधानमन्त्रिणः नरेंद्र मोदिनः भारतीय प्रवासी जनैः भव्यं स्वागतं कृतम्। तत्र फ्रांस इटली कलाकारैः प्रस्तुतानि कथक भरतनाट्यादीनि भारतीय शास्त्रीय नृत्यानि अपि दृष्टानि। नीस नगरे भारतीय प्रवासी जनानां स्नेहपूर्ण स्वागताय प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी तेषां धन्यवादम् अकरोत्। फ्रांस देशस्य नीस नगरे प्राप्तस्य हार्दिक स्वागतस्य कृते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय प्रवासी जनेभ्यः धन्यवादम् अकरोत्। सामाजिक अंतर्जाल माध्यमेन प्रकाशिते संदेशे तेन उक्तं यत् एतत् स्वागतं स्मरणीयं। सः अवदत् यत् स्वदेशात् दूरस्थितः अपि भारतीयः प्रवासिनः जनाः भारतेन सह स्वीयं दृढं सम्बन्धं निरन्तरं धारयन्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेंद्र मोदिनः स्लोवाकिया यात्रा भारत स्लोवाकिया सम्बन्धान् सुदृढीकरिष्यति। स्लोवाकिया देशे भारतस्य राजदूतः अपूर्व चन्द्रः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेंद्र मोदिनः स्लोवाकिया यात्रा उभयोः देशयोः सहयोगस्य नूतनान् मार्गान् उद्घाटयिष्यति। ब्रातिस्लावा नगरे आकाशवाण्याः वार्ताहरेण सह वार्तालापे असौ अवदत् यत् एषा यात्रा विशेषतः आर्थिक व्यापारिक सम्बन्धानां सुदृढीकरणे महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहिष्यति। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थायाः अध्यक्षः डॉक्टर वी नारायणनः सूचितवान् यत् इसरो तथा परमाणु ऊर्जा विभागः चंद्र अवतरण ज्ञानस्य विकासार्थं संयुक्त रूपेण कार्यं कुरुतः। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थायाः अध्यक्षः डॉक्टर वी नारायणनः अवदत् यत् इसरो परमाणु ऊर्जा विभागेन सह मिलित्वा अत्यंत शीतल परिस्थितेः संरक्षणार्थं उन्नत कृत्रिम तापन प्रणालीं च विकसितुं कार्यं कुरुतः। बेंगलुरु नगरे आयोजिते CSIR RISE सम्मेलने सः उक्तवान् यत् सौर ऊर्जया संचालितं चन्द्रयानत्रयस्य लैंडर विक्रम अवतरणयानं चन्द्रे केवलं 14 दिनानि यावत् कार्यम् अकरोत्। अवतरणयानं निर्मातुं प्रयासान् करिष्यतः इदानीम् उभौ विभागौ, येन इदानीं 200 दिनपर्यन्तं चन्द्रे कार्यं भवेत्। कृत्रिम तापन प्रणाल्या युक्तम् एतत् ज्ञानं चन्द्रस्य कठोर जलवायु परिस्थितिषु अपि कार्यं करिष्यति तथा च भविष्ये दीर्घकालिक चन्द्र अन्वेषण अभियानेषु अपि सहायकं भविष्यति। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हिमाचल प्रदेशे डाक विभागस्य ड्रोन आधारित डाक परिवहन सेवायाः शुभारंभम अकरोत्। एषा सेवा मंडी प्रधान डाक कार्यालयात् रेहरधारा शाखा डाक कार्यालय पर्यन्तं प्रवृत्ता। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः उक्तवान् यत् ईरान देशेन सह युद्ध समापन सम्बद्धस्य सन्धिपत्रे अद्य हस्ताक्षरं सम्भाव्यते। तेन उक्तं यत् अस्य सन्धेः लक्ष्यं ईरानस्य परमाणु अस्त्रेभ्यः दूरीकरणमस्ति। एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट श्रृंखलायाः प्रथम स्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तान दलं पराजितम्। हिमाचल प्रदेशस्य धर्मशाला नगरे प्रथम एक दिवसीय क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तान दलं सप्त क्रीडक पुरस्सरं पराजितम् इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
4: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने बताया है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया गया है। यह लूनर लैंडर को चंद्रमा के बहुत ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में श्री नारायणन ने बताया कि इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने का काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरर धर की शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहर धर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थलसेना प्रमुख होंगे। वर्तमान में वे थलसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने की संभावना व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिन में ऐसा संभव हो। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पहुंच गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। अगले 3-4 दिन तक आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, कराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ तेज हवा और बारिश की संभावना है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत ग्रुप ए में अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए 16 में से 13 मुकाबले जीत चुका है। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एक दिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार वर्षा के कारण मैच की शुरुआत में देरी हुई और इसे 25-25 ओवर का कर दिया गया। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आज शाम 6:30 पर आप सुनेंगे एडबर्स्टन बर्किंगम स्टेडियम इंग्लैंड में खेले जाने वाले आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

आज रात्रि 11:10 पर आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा निर्मित कार्यक्रम में सशक्त भारत। दैनिक आयोजन युवा संसार का समय रहेगा 5:30। आज का विषय रहेगा विश्व रक्तदाता दिवस। साथ ही आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत युवा पसंद।

दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन। आज का विषय रहेगा विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व वरिष्ठ जनों के प्रति अभद्रता विरोध दिवस।

दोपहर 1:10 पर आनंद उठाइए का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेत खलिहान। विषय रहेगा इन दिनों मुर्गी घरों की देखभाल।

आज शाम 6:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कृषि जगत, विषय रहेगा फूलों की खेती। साथ ही आप सुनेंगे बातचीत, गर्मियों के मौसम में मछली तालाबों की देखभाल, जानकारी देंगी डॉक्टर सुनीता रानी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रूपरेखा, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। हमारे आज के कलाकार हैं अनूप जलोटा।

आज प्रभु आएंगे, आज सेवा का अवसर मिलेगा, जन्म जन्म के पाप धुल जाएंगे। भगवान राम पहुंचे, केवट से कहा, केवट हमें इस

भगवान राम सोचने लगे कि केवट का तो यही काम है, इसी से इसका परिवार चलता है, तो इसे कुछ मजदूरी देनी चाहिए। लेकिन देते क्या, कुछ था ही नहीं। बनवासी राम सब छोड़कर आए थे। इशारा किया सीता जी को और सीता जी ने एक अंगूठी केवट को देनी चाहिए। केवट ने मना कर दिया। केवट बोला, प्रभु मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता, आज तो सेवा का अवसर मिला है।

साधारण सी बात है, जब भी कोई बालक जन्म लेता है तो उसके रोने की आवाज सुनकर सब खुशी मनाते हैं। भक्त कबीर ने कितने गहराई से सोचा होगा इस बात को, जो इतना बड़ा संदेश मानव जाति को दे दिया।

शरीर को एक चादर के समान समझते हुए भक्त कबीर ने लिखा है, चदरिया झीनी रे झीनी, ये शरीर रूपी चादर किस प्रकार बनी, कैसे इस चादर का निर्माण हुआ।

शरीर ने जन्म लिया। जब मोरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी। रंगरेज कौन? गुरु के पास शिक्षा का रंग चढ़ाने के लिए इस चादर को भेजा गया।

गुरु से शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद ये जीवन आरंभ होता है, और ऐसे समय पर एक चेतावनी, एक शिक्षा भक्त कबीर ने दी है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत, कलाकार थे अनूप जलोटा। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।

कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है और साथ ही स्वीकार कीजिए अपने दोस्त हितेश का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, दान एक संतुष्टि, संतोष और सहयोग भरा शब्द है जिसे सुनते ही अंतरात्मा तृप्त हो जाती है।

और जब बात रक्तदान की, रक्तदाता की आती है, तो कुछ कहते ही नहीं बनता। साथियों, रक्तदान एक पहल बड़ी है, उत्साहित सबको करती है, खुद संतुष्ट रहे जीवन, रोगी जन से दुआएं मिलती हैं, दुनिया के आगे नजरें कभी न झुकती हैं, रक्तदान महादान है, मिलती मन को संतुष्टि है, शुद्ध फायदे रक्तदान के हैं, उपचार श्रृंखला रोगी जन की है। जी हाँ साथियों, आज है विश्व रक्तदाता दिवस। साथियों, विश्व रक्तदाता दिवस हर साल 14 जून को दुनिया भर के कई देशों में मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस नोबेल प्राइज विनर कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। साथियों, इस आयोजन की शुरुआत वर्ष 2004 में स्वस्थ व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से और बिना किसी भुगतान के सुरक्षित रक्तदान की आवश्यकता के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। साथियों, इस दिन रक्तदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे जरूरतमंद लोगों को जीवन रक्षक रक्तदान करते हैं। साथियों, इस दिन का उद्देश्य विश्व भर के सभी देशों के रक्तदाताओं के अमूल्य योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद देना है, स्वैच्छिक, सुरक्षित और निःशुल्क रक्तदान को बढ़ावा देना है और पर्याप्त रक्त आपूर्ति सुविधा करने के लिए सभी को प्रेरित करना है। और अब आपको सुनवाते हैं एक गीत।

साथियों, रक्तदान सिर्फ खून का दान नहीं है, किसी की जिंदगी बचाने का एक वरदान है। विश्व रक्तदाता दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में जरूरतमंद लोगों को रक्त और रक्त उत्पादों की आपूर्ति करना होता है। ये अभियान हर साल लाखों लोगों की जान बचाता है और रक्त प्राप्तकर्ता के चेहरे पर मुस्कान लेकर आता है। रक्तदान कई जानलेवा बीमारियों से पीड़ित रोगियों की मदद करता है और उन्हें बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित भी करता है। ये दुनिया भर में कई जटिल चिकित्सा और शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं को आसान बनाता है। ये अभियान गर्भावस्था से पहले और बाद में महिलाओं की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। साथियों, दान किए गए रक्त का उपयोग गंभीर रूप से एनीमिया से पीड़ित महिलाओं, एनीमिया से पीड़ित बच्चों, अत्यधिक रक्त हानि वाली दुर्घटनाओं, शल्य चिकित्सा रोगियों के लिए, थैलेसीमिया रोगियों के लिए, हीमोफीलिया या सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित व्यक्तियों के लिए या रक्त विकार वाले व्यक्तियों के लिए उन्हें रक्तदान किया जाता है और उनकी जान बचाने में काम आता है रक्तदाताओं द्वारा दान किया गया रक्त। साथियों, किसी की भी मदद करना बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि ये काम सच में मुस्कुराहट लेकर आता है और जीवन भी उसी का नाम है जो हम दूसरों के लिए जीते हैं।

साथियों, किसी ने ठीक ही कहा है, आपका थोड़ा सा रक्त किसी की सांसों को दे सकता है नया वक्त। साथियों, पर्याप्त रक्त आपूर्ति से वंचित क्षेत्रों में उचित रक्तदान के लिए पर्याप्त रक्त की व्यवस्था करने में कई जानलेवा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। रक्त और उसके उत्पादों की पर्याप्त आपूर्ति केवल स्वयं प्रेरित, स्वैच्छिक और निःशुल्क रक्तदाताओं द्वारा नियमित और सुरक्षित रक्तदान से ही संभव हो पाती है। साथियों, रक्तदान एक नेक कर्म है। इसे करने के लिए सभी को जागरूक करते रहें, जागरूकता को बढ़ाते रहें और इस राह में कभी रुकना नहीं चाहिए।

उद्देश्य हैं। सबसे ज़्यादा तो यही है कि रक्तदान को प्राप्तकर्ताओं के लिए एक अनमोल उपहार बनाना और उन्हें नया जीवन देना। साथियों, आंकड़ों के अनुसार ये पाया गया है कि केवल 60 से ज़्यादा देशों को ही स्वैच्छिक और निःशुल्क रक्तदाताओं से प्राप्त रक्त की आपूर्ति मिल रही है, जबकि बहुत से देश आज भी रक्तदान के लिए रोगी के परिवार के सदस्यों या सशुल्क रक्तदाताओं पर निर्भर है। सभी देशों में स्वैच्छिक रक्तदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए ही ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। साथियों, WHO इस अभियान को सभी देशों में कई गतिविधियों का आयोजन करके चलाता है। ये एक उत्सव है जिसमें उन लोगों की कहानियों को उजागर किया जाता है जिन्हें अपने दिल की धड़कन को जारी रखने के लिए तत्काल रक्तदान की आवश्यकता होती है। साथियों, ये उत्सव विश्व भर के उन स्वयंसेवी और निःशुल्क रक्तदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करता है जिन्होंने लाखों लोगों की जान बचाई है। साथियों, रक्तदाता दूसरों को तो प्रेरित करते ही हैं, जिससे उनकी सांसें चलती हैं और वो लोग भी जीवन में मैदान फतेह कर पाने में सक्षम बन पाते हैं।

साथियों, विश्व रक्तदाता दिवस 100% स्वैच्छिक और निःशुल्क रक्तदान की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मनाया जाता है। ये दिवस रक्तदाताओं को सुरक्षित रक्तदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है, ताकि माताओं, शिशुओं और अन्य जनों के जीवन को बचाया जा सके। साथियों, रक्तदान सेवाओं को मजबूत करने के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों और अभियानों के माध्यम से स्वैच्छिक रक्तदाताओं को प्रेरित भी किया जाता है। साथियों, हमेशा याद रखें कि रक्तदान महादान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है और हम सभी को रक्तदान करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी दोस्त हितेश को अनुमति दें आज का कार्यक्रम सुबह सवेरे यहीं संपन्न करने की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार, उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

0: खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी।
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति

0: डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
1: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और CSIR ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं।

0: जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
1: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
0: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
2: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
3: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
0: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
5: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामी रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
4: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ते ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असली तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates event in Nice today. Indian Space Research Organization developing long-life moon landers capable of surviving up to 200 days, says ISRO Chairman V. Narayanan. IMD says conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh during next 2 to 3 days. US President Donald Trump claims deal to end war with Iran will be signed today and Strait of Hormuz will be opened to all immediately afterwards. India beat Afghanistan by 7 wickets in rain-affected first one-day international cricket at Dharamshala. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin their campaign against arch-rivals Pakistan in Birmingham this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his stay in France, he will join French President Emmanuel Macron in jointly inaugurating Bharat Innovates and hold bilateral talks with him on key areas of cooperation and global issues ahead of the upcoming G7 summit. Mr. Modi will subsequently travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. At a community reception held at the iconic Hotel Negresco yesterday, a large gathering of the Indian diaspora accorded a warm and enthusiastic welcome to the Prime Minister.

0: सभी साथी मिलकर बोलेंगे
1: जय हिंद।
0: आज मैं अदम में
2: और मैं पंखुरी
0: आप सभी का इस बाल कुछ कार्यक्रम में स्वागत करते हैं।
2: अदम में आज विश्व रक्तदाता दिवस है, तो इसके बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। इसका उद्देश्य लोगों को रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूक करना और स्वैच्छिक रक्तदाताओं का सम्मान करना है। इस दिन का आयोजन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है और रक्तदान एक महान कार्य है, क्योंकि हमारे खून की चंद बूंदें किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की जान बचा सकती हैं, तो रक्तदान अवश्य करें। क्या आप भी कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में?
0: हाँ पंखुरी,
2: बताइए।
0: कहते हैं रक्तदान है महादान, इससे बड़ा न कोई पुण्य महान। साथियों, विश्व रक्तदाता दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाता है।

0: ये दिवस वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर के सम्मान में मनाया जाता है। उन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। इस दिवस पर उन लोगों को धन्यवाद दिया जाता है जो ब्लड डोनेट करके दूसरों की जान बचाते हैं, किसी भी एक्सीडेंट या ऑपरेशन के समय, या कैंसर और थैलेसीमिया के मरीजों को ब्लड डोनेशन से बचाया जा सकता है। खून दान करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए और जागरूकता बढ़ाने के लिए WHO ने सन 2004 में विश्व रक्तदाता दिवस मनाना शुरू किया था। साथियों, एक बार के रक्तदान से 3 लोगों की जान बच सकती है। 18 से 65 साल का स्वस्थ व्यक्ति 3 महीने में एक बार रक्तदान कर सकता है। साथियों, मैं भी 18 साल का होकर ज़रूर रक्तदान करूँगा। बताइए, आप भी ऐसा करोगे?
1: ज़रूर करेंगे। मैं
2: दोनों बच्चों ने बहुत अच्छा संदेश दिया है रक्तदान के बारे में, और रक्तदान एक ऐसा दान है बच्चों जो कि हम दिल से करते हैं। दिल से किया गया जो रक्तदान होता है वो महान होता है, और किसी का जीवन बचाना बहुत बड़ी बात है। कई लोगों में ये भ्रम होता है बच्चों कि हम रक्तदान करेंगे तो हमारे शरीर में खून की कमी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। रक्तदान करने के बारे में एक मिसाल दी जाती है कि जैसे हम अपने बढ़े हुए नाखून काटते हैं, ठीक उसी तरह से हम रक्तदान करते हैं। रक्त आपके शरीर में फिर से अपनी आपूर्ति कर लेता है, आप अपने शरीर को स्वस्थ रख पाते हैं रक्तदान के ज़रिए, क्योंकि जो व्यक्ति रक्तदान करता है उसका शरीर बहुत अच्छे ढंग से काम करता है, ताज़ा खून आपके शरीर में बनता है, और आप रक्तदान करते हैं तो दूसरे का जीवन बचाते हैं। तो रक्तदान करने का प्रण अवश्य करें। आज रक्तदाता दिवस है, बच्चों ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, और अदम्य ने तो कहा है कि वो 18 वर्ष का हो जाएगा तो रक्तदान करेगा। तो सभी बच्चे जो 18 वर्ष तक का अपना ये संकल्प है, सभी बच्चे लें और रक्तदान ज़रूर करें। रक्तदान महादान कहा गया है। और अब फिर से स्टूडियो में बच्चों के पास माइक है।
3: अदम में अब बात कर लेते हैं बड़ों का सम्मान करने के बारे में। क्या आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
0: हाँ पंखुरी,
3: बताइए।
0: साथियों, एक ज्ञान की बात हम जन्म से ही सुनते आए हैं कि बड़ों का आदर करो। ये ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारे बड़े अनुभव और प्रेरणा का खजाना होते हैं। बड़ों को का सम्मान करना हमारी संस्कृति की पहचान है। हमें पालने में हमारे बड़े अपना आराम, नींद, शोक आदि का त्याग करते हैं। उनका आदर करना हमारा फर्ज है। आदर मात्र एक छोटा सा रिटर्न गिफ्ट है। हमारे बड़े हमारे पूजनीय हमें अच्छी बातें सिखाते हैं, उठना बैठना सिखाते हैं और समाज का बोध कराते हैं। हमारे बड़े हर संकट में हमारा सहारा बनते हैं। साथियों, जब बड़े हमें टोकते या डांटते हैं तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। वो हमारी भलाई और अच्छाई के लिए ऐसा करते हैं, ताकि हम गलत संगत और गलत रास्ते से बचे रहें। बड़े हमारे सम्माननीय होते हैं, उनकी दुआ आशीर्वाद हमारा मनोबल बढ़ाते हैं और हम इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं। बड़ों के साथ समय बिताना, उनकी छोटी छोटी मदद करना सभी के दिल को सुकून देता है। आप भी ये सुकून प्राप्त करेंगे साथियों?
1: हाँ, करेंगे।
3: और अदम में हमें अपने बड़ों से कितना कुछ सीखने को मिलता है, तो इसीलिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से कोई बात उन्हें बुरी या कुछ ठेस ना पहुँचे, है ना?
0: हाँ पंकुरी।

0: गीत कैसा लगा साथियों?
1: बहुत अच्छा मंगली।
0: साथियों अब सुन लेते हैं CIET द्वारा तैयार किया गया ये कार्यक्रम जिसका शीर्षक है नहीं पढ़ना मुझे बीमार।
2: आइए सुनते हैं मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम नहीं होना बीमार। कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बड़े रोचक ढंग से बताया गया है कि किस प्रकार एक लड़के ने जब स्कूल नहीं जाने के लिए बीमारी का बहाना बनाया तो वह कैसी कैसी मजेदार समस्याओं में फंस गया।
3: बेटा सोमेश चलो झटपट तैयार हो जाओ, चाचा जी को देखने जाना है, जल्दी तैयार हो जाओ।
4: जी दादाजी।
5: साथियों हुआ ये कि सोमेश के चाचा सुधाकर अचानक बीमार हो गए, इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
6: सोमेश दादा दादी के साथ अस्पताल पहुंचा। ये उसका अस्पताल जाने का पहला अनुभव था। उसने देखा,
4: वाह क्या सफाई है, सफेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चकाचक, कोई शोर नहीं, अद्भुत शांति।
5: एक पलंग पर सुधाकर चाचा लेटे हुए थे, उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो गए।

0: कैसे हो बेटा? अब कैसी तबीयत है?
1: जी माँ जी, अब बहुत बेहतर हूँ।
0: अरे ये लो, डॉक्टर साहब भी आ गए। डॉक्टर साहब, सुधाकर के लिए थोड़ा सा साबुदाने का हलवा लाई थी, खिला दूं? बड़ा स्वादिष्ट बनाया है। हाँ
2: जी जी, जरूर खिलाइए, शौक से खिलाइए। लेकिन हाँ, ना बाहर का खाना और ना तला भुना हुआ खाना।
3: वाह, क्या ठाट है बीमारों के भी। आराम से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबुदाने का हलवा खाते रहो, कोई काम भी नहीं करना पड़ता। काश सुधाकर चाचा की जगह मैं होता। ओह, मैं कब बीमार पड़ूंगा।
4: कुछ दिन बीत गए। एक दिन सोमेश को स्कूल जाने का मन नहीं हुआ। उसने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो जरूर सजा मिलती। उसने सोचा मम्मी पापा भी किसी काम से दूसरे शहर गए हैं, बीमार पड़ने के लिए आज का दिन सबसे बढ़िया रहेगा, सो चलो बीमार पड़ जाते हैं।
0: सुमेश, सुमेश बेटा, उठो, तैयार हो जाओ, स्कूल का समय हो गया है।
3: दादी, लगता है मुझे बुखार है।
0: क्या कहा, बुखार है? अरे तेरे मम्मी पापा को भी कल ही जाना था, लेकिन तुम तो कल तक बिल्कुल ठीक ठाक थे। जरा माथा तो छूने दो। अरे तुम्हारा माथा तो बिल्कुल ठंडा है।
3: दादी, बुखार बस अभी अभी आया होगा, इसलिए माथा गर्म नहीं हुआ होगा।
0: अरे कोई बात नहीं, मैं जरा थर्मामीटर लेकर आती हूँ।
3: अरे दादी, इतनी जल्दी पता थोड़ी चलेगा।
0: लो, ये रहा थर्मामीटर, चलो अब इसे अपने मुंह के अंदर रखो। हाँ
3: दादी, मुंह में रखने से पता थोड़ी चलेगा, अंदर जल रहा है।
0: अरे बेटा, लेकिन स्कूल का क्या होगा?
3: मैंने कहा ना, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, स्कूल नहीं जाना, अब तो पेट में भी दर्द हो रहा है।
0: अरे ये तो खांस भी रहा है। अब तो स्कूल बस भी निकल गई, चलो तुम आराम ही कर लो।
3: जी दादी।
5: सर्दियों के दिन थे, सोमेश को और क्या चाहिए था, रजाई में दुबक गया। थोड़ी देर में फिर से गहरी नींद आ गई। खटर पटर की आवाज सुनकर उसकी आंख खुली।
6: सोमेश बेटा, बेटा सोमेश, अब कैसी तबीयत है?
3: जी दादाजी, अच्छा नहीं लग रहा है।
6: अरे अरे अरे अरे, फिक्र न करो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी तबीयत। हो हो, तुम्हें तो खांसी भी है। अजी सुनती हो?
0: जी।
6: सुमेश को खांसी भी आ रही है, जरा वो वैद्य जी वाला काढ़ा भी लेती आना, गाढ़ा वाला काढ़ा।
0: जी जी, अभी लाई। लो बेटा, काढ़े के साथ साथ पुड़िया वाली दवा भी ले लो, धीरे धीरे आराम आ जाएगा। चलो ये लो, दवा लो, चलो चलो गटक जाओ, शाबाश।
3: ओ, ये तो बहुत कड़वी है।
0: अच्छा, इसे खाने में क्या देना है?
6: देखो, आज शाम तक उपवास ही करे तो अच्छा, सारे विकार निकल जाएंगे। बेटा अब तुम थोड़ा आराम कर लो, ले जाओ, शाबाश।
3: जी दादाजी।
5: दोनों चले गए। सोमेश को फिर से नींद आ गई। तेज भूख भला निंदिया रानी को कैसे टिकने देती। थोड़ी देर बाद आंख खुल गई। ले

0: रहना मजबूरी थी, यूं ही पड़ा रहा। पड़े पड़े अब पीठ भी दुखने लगी थी, लेकिन कोई उपाय न था। लगभग एक घंटे के बाद फिर से दादाजी आए।
1: कैसी तबीयत है बेटा?
2: जी जी अब बिल्कुल ठीक हूँ।
1: बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बेटा तुम्हें दवाई पूरी लेनी पड़ेगी। दवा बीच में नहीं छोड़ते, रात होने तक दो बार लेनी है। लो लो दवा पी लो, चलो उठो उठो, शाबाश। पकड़ता हूँ उठो। चलो चलो, शाबाश बेटा, अब तुम आराम कर लो, ले जाओ।
0: बड़ी मुसीबत थी ये नाटक, अब भारी पड़ता जा रहा था। भूख के कारण नींद भी नहीं आ रही थी, और आंख जरा भी लगती तो खाने की चीजें ही दिखाई पड़ती।
2: बर्तनों की आवाज आ रही है, शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। खुशबू तो दाल चावल की आ रही है। अरहर की दाल में बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी। फिर उसमें उन्होंने नींबू भी तो निचोड़ा होगा। हरी मिर्च भी तली गई है, उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं। जरा देखो, उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो साबुदाने का हलवा ही तो मांगता, कोई ताजमहल थोड़ी ही मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो सोमेश बाबू, सारे विकार निकल जाएंगे। थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दे कोई, इससे अच्छा तो स्कूल ही चला जाता, सजा ही तो मिलती, पर ऐसी सजा, उफ।
3: कार्यक्रम कैसा लगा साथियों?
4: बहुत अच्छा आदम में।
5: आदम में, अब हम अपने साथियों से बातचीत कर लेते हैं।
3: हाँ पंकु जी।
5: तो पहला साथी हमारा नाम बताए।
3: निहारिका।
5: निहारिका आप हमें क्या सुनाएंगी?
3: कविता।
5: सुनाइए।
3: काशी में जन्मी मणिकर्णिका नाना साहब के संग पली मनु, घुड़सवारी करती और तलवार चलाती थी। छोटी उम्र में ही सीखा रण का सारा कौशल, बचपन से ही भरा था उसमें वीरता का तेज। झांसी के राजा गंगाधर से ब्याह रचा, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का मान बढ़ाया। पुत्र आया खुशियां आई, पर विधि को कुछ और था भाया। पति और पुत्र को खोकर भी उसने हिम्मत नहीं गवाई, दुश्मन के छक्के छुड़ा रणचंडी बनी रानी। कालपी से ग्वालियर तक घोड़े पर बिजली सी दौड़ी, रानी ने हुंकार के साथ जब वीरगति को पाया। फिरंगी भी बोले खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सच है सिर कट जाए पर झुके नहीं, यही सिखा गई वो वीरांगना, हर संकट से लड़ना जाना दी रानी लक्ष्मीबाई ने यही प्रेरणा। धन्यवाद साथियों।
5: निहारिका आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई। और साथियों, महारानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि 18 को मनाई जाती है। महारानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महान वीरांगना थी। इनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में एक मराठी परिवार में हुआ था। मात्र 29 के वर्ष में अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए उन्होंने 18 जून को ग्वालियर की रणभूमि में वीरगति प्राप्त करी। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन स्नेहवश इन्हें सब मनु बुलाया करते थे। मनु ने बचपन में ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सेराई में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए उन्होंने अपने प्राणों का स्वेच्छित बलिदान दिया और इस महान वीरांगना को सच शत नमन।
3: सही कहा पंखुरी।
5: अब हमारा अगला साथी नाम बताए।
6: सलोनी।
5: सलोनी आप हमें क्या सुनाएंगी?
6: एक कहानी
5: सुनाइए।
6: एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम होता जा रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा और जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए ही हो रहा है। नारद जी बोले, मैं तो देखकर ही आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वालों धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। तो नारद जी ने कहा, मैं अभी एक जंगल में से आया हूँ, वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी और कोई उसे बचाने के लिए नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा, गाय को फंसा देखकर वह रुका नहीं, उस पर पैर रखकर ही दलदल पार कर गया और आगे जाकर चोर को सोने की मोहरे से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा और उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश करी, पूरे शरीर का जोर लगाया और उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद जब वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए, ये कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले, ये सही ही हुआ। जो चोर था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिली और वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी हुई थी। लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट से बदल गई। साथियों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि इंसान को कर्म ही करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। धन्यवाद।
5: अब सुहानी आप क्या सुनाएंगी?
7: एक कविता
5: सुनाइए।
7: हमारा प्यारा पर्यावरण है, धरती माँ का है धन, पेड़ पौधे नदियाँ पर्वत, उनसे सुंदर सारा जीवन। नीला नीला अंबर ऊपर चमके सूरज चंदा प्यारा, चिड़िया गाए मीठा गाना, महके हर एक फूल हमारा। पेड़ हमें देते हैं छाया, फल फूलों का मीठा उपहार, शुद्ध हवा हमको मिली, उनसे चलता जीवन संसार। नदियाँ कल कल बहती जाएं, सबकी प्यास बुझाती हैं, धरती पर हरियाली लाकर खुशियों के रंग सजाती हैं। आओ मिलकर कसम यह खाएं, पेड़ नए हम रोज लगाएं, कूड़ा कभी ना इधर उधर फेंके, धरती माँ को स्वच्छ बनाएं। पर्यावरण की रक्षा करके भविष्य अपना बचाएंगे, हरा भरा जब होगा जब तभी हम मुस्कुराएंगे। धन्यवाद।
5: सुहानी आपने हमें प्रकृति पर बहुत अच्छी कविता सुनाई। अब हमारा अगला साथी अपना नाम बताए।
8: लावण्या।
5: आप हमें क्या सुनाएंगी?
8: एक कहानी जिसका नाम है सच्चा धन।
5: सुनाइए।
8: एक छोटे से गांव में धर्मपाल नाम का एक बहुत ही दयालु व्यक्ति रहता था। उसके पास धन दौलत तो अधिक नहीं थी, लेकिन उसका हृदय बहुत ही बड़ा था। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा, कुएं सूख गए और लोगों के पास पीने के लिए पानी तक नहीं रहा था। गांव के अमीर सेठ ने सभी कुओं पर ताला लगवा दिया ताकि पानी को ऊंचे दामों पर बेचा जा सके। लेकिन धर्मपाल ने अपने घर के बाहर एक बड़ा सा घड़ा पानी भरकर रख दिया और कोई भी राहगीर आकर वहाँ से पानी पी सकता था। सेठ को यह बात पसंद नहीं आई। उसने धर्मपाल के पास जाकर कहा, तुम कितने मूर्ख हो, तुम इस पानी को बेचकर अमीर बन सकते थे। धर्मपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी धन तो हाथ का मैल है, जो आज है कल नहीं, लेकिन जो संतुष्टि और दुआएं मुझे प्यासों को पानी पिलाकर मिलती है वह दुनिया का सबसे बड़ा धन है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा सुख और धन पैसों में नहीं बल्कि निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने में है। धन्यवाद।
5: लावण्य आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई। अब अदम्य हमें अद्विता एक कविता सुनाएंगी।
9: जी
5: सुनाइए।
10: मैं गुलाब का फूल बनूंगी, मधुर मधुर मुस्कुराऊंगी, पास में रचो तितली है उसको दोस्त बनाऊंगी। कांटों में उग जाते फूल, फिर भी है मुस्काते फूल, कभी डरे नाम संकट से हमको यह सिखलाते फूल। बहुत बड़े हो है भगवान लेते सभी, तुम्हारा नाम मुझे बना दो तुमको करो, मैं कल्याण तुम ईश्वर बड़े मान हम पर कृपा।

0: Creo que cuando es nevado.
1: अब आयुष आप क्या सुनाएंगे?
2: एक कहानी
1: सुनाइए।
2: सुंदर वन में एक शेर रहता था। एक दिन भूख के मारे उसका बुरा हाल था। उस दिन उसे आसपास कोई भी शिकार नहीं मिला था। अभी वह थककर बैठा ही था कि कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे एक खरगोश का शावक दिखाई दिया। वह पेड़ की छाया में उछल कूद कर रहा था। शेर उसे पकड़ने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ा। खरगोश शावक ने शेर को अपनी ओर आते देखा तो वह जान बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन शेर ने दो ही छलांगों में उसे धर दबोचा। फिर जैसे ही शेर ने उसकी गर्दन छुपानी चाही, उसे एक हिरन दिखाई दिया। उसने छोटे से खरगोश को छोड़ दिया और हिरन की ओर लपका। खरगोश का बच्चा उसके पंजे से छूटते ही भाग गया। उधर हिरन ने शेर को अपनी ओर आते देखा तो लंबी लंबी छलांगे भरता हुआ भाग खड़ा हुआ। शेर हिरन को पकड़ ही नहीं पाया। इधर खरगोश भी हाथ से गया और उधर हिरन भी नहीं मिला। खरगोश के बच्चे को छोड़कर शेर पछताने लगा। उसने सोचा कि किसी ने सच ही कहा है, जो आधी को छोड़कर पूरी को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है, उन्हें आधी से भी हाथ धोना पड़ता है। साथियों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज्यादा लोभ करना कभी भी ठीक नहीं होता। जो मिल जाए उसी को काफी समझना चाहिए और उसी को खा लेना चाहिए। धन्यवाद।
0: आयुष, आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई।
1: अब हमारा अगला साथी अपना नाम बताएं।
3: सृष्टि।
1: सृष्टि, आप हमें क्या सुनाएंगी?
3: एक कविता।
1: सुनाइए।
3: जब चारों ओर अंधेरा हो, काना का दीप जला लेना। जब गमों ने तुमको घेरा हो, तुम हाल काना को सुना देना। जब दुनिया तुमसे मुंह मोड़े, तुम अपने काना को मना लेना। जब अपने तुमको ठुकरा दे, काना डर को तुम अपना लेना। जब कोई तुमको रुलाए तो तुम काना के गीत गुनगुना लेना। मेरा काना करुणा का सागर है, तुम उसमें डुबकी लगा लेना, तुम उसमें डुबकी लगा लेना। धन्यवाद।
1: अब हमारा अगला साथी अपना नाम बताएं।
4: तुषार।
1: क्या आप क्या सुनाएंगे?
4: एक कविता।
1: सुनाइए।
4: मैं हूँ प्यारा कंप्यूटर, काम तुम्हारे आता। एक पल में दुनिया भर की बातें तुमको बतलाता। यहीं सजा दूं आसमान के कितने अजब नजारे। बोलो तो ला दूं मैं भर भर मुट्ठी तारे। मेरे भीतर कई कहानी, चाहे कोई सुन लो। मैं सपनों का एक खजाना, सपना कोई चुन लो। बैठो परखो मुझे जरा, हर सवाल का जवाब हूँ। पढ़ लो मुझको भी भाई, मैं भी तो एक किताब हूँ। माउस मेरा कर देगा हर मुश्किल आसान। एक क्लिक से मिल जाएगा तुमको यही जान, तुमको यही जान। धन्यवाद।
1: साथियों, इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए सभी साथी मिलकर बोलेंगे
5: जय।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम बाल कुंज। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं।

कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है और साथ ही स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त हितेश का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम लेकर आए हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत और आज कार्यक्रम है एक कलाकार। आपकी नज़र करते हैं कार्यक्रम का ये पहला नगमा।

आवाज देने के लिए उन्हें आज भी लोकप्रिय रूप में याद किया जाता है। साथियों, महेंद्र कपूर के गीतों के बिना भारतीय सिनेमा का इतिहास अधूरा सा लगता है। पार्श्व गायक महेंद्र कपूर न केवल गायन की विधा में बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, बल्कि उन्होंने कई भाषाओं में और विभिन्न मंचों पर गीत गाए। संगीत जगत में उनका 5 दशकों से अधिक लंबा करियर रहा और साथियों, वो अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से कई बार अलंकृत हुए। उन्हीं की आवाज में गाए खूबसूरत नगमे आज हम आपके लिए पेश करेंगे।

0: साथियों, महेंद्र कपूर का जन्म अमृतसर में एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसका फिल्म उद्योग से कोई नाता नहीं था। बहुत कम उम्र में ही वे मुंबई आ गए थे। जल्द ही संगीत में उनकी रुचि जुनून में बदल गई थी। उन्होंने पंडित हसन लाल, पंडित जगन्नाथ, उस्ताद नियाज अहमद खान और उस्ताद अब्दुल रहमान खान जैसे संगीत उस्तादों के मार्गदर्शन में शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। उन्होंने अपने पूरे जीवन में महान गायक मोहम्मद रफ़ी को अपना आदर्श माना। रफ़ी ने उन्हें इतना प्रेरित किया कि उन्होंने उनकी गायन शैली को भी अपनाया। साथियों, महेंद्र कपूर की गायन प्रतिभा ने उन्हें 1957 में मेट्रो मर्फी अखिल भारतीय गायन प्रतियोगिता भी जितवाई, जिससे उन्हें फिल्म उद्योग में बहुत बड़ा ब्रेक मिला। उन्होंने वी शांताराम की फिल्म नवरंग के लिए गाकर पार्श्व गायक के रूप में पदार्पण किया। संगीत निर्देशक सी रामचंद्र द्वारा रचित आधा है चंद्रमा रात आधी महेंद्र कपूर का पहला आधिकारिक रूप से रिकॉर्ड गाना था। इसके साथ ही कपूर ने जहां चाह है वहां राह है वाली कहावत को बिल्कुल पूरी तरह से साकार कर दिया। साथियों, आपको नवरंग फिल्म से सुनवाते हैं उन्हीं की आवाज का ये पहला गीत जिसने उन्हें पार्श्व गायक की छवि दी।
1: अटक अटक झट पट पन घट पर चटक मटक इक नार नवेली गोरी गोरी ग्वाल नकी छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलवेली कंकरी गले में मारी कंकरी कन्हई ने पकड़ी बाह और की अटखेली भरी पिचकारी मारी सारा रा रा रा रा रा रा रा रा रा भोली पनी हरी भोली।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत। दे स्मार्ट एडवाइजर्स

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: साथियों, 5 दशक लंबे करियर में महेंद्र कपूर के गीतों की संख्या 25,000 से भी अधिक थी। वो एक बहुमुखी गायक रहे। उनका गायन कभी भी नीरस नहीं हुआ। उन्होंने भजन, देशभक्ति गीत, कव्वाली आदि गाकर श्रोताओं को विविधता प्रदान की। उन्होंने प्रसिद्ध टीवी सीरियल महाभारत का टाइटल ट्रैक भी गाया था, जो आज भी सभी को याद है। इतनी विविधता के साथ कपूर ने मराठी, पंजाबी और गुजराती जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में भी गीत गाए। मराठी श्रोताओं को उनकी आवाज़ इतनी पसंद आई कि उन्होंने दिग्गज अभिनेता दादा कोंडके के लिए भी संगीत देने का महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया। हालांकि उनका जन्म पंजाब में हुआ था, लेकिन मुंबई में रहने के कारण उन्हें मराठी और गुजराती भाषाओं का भी विशेष ज्ञान था। श्रोता आज भी महेंद्र कपूर के अनेक भाषाओं में गाए गीतों को याद करते हैं, सुनते हैं। और साथियों, जब बात आती है महेंद्र कपूर के चार्ट बस्टर सॉन्ग्स की, तो ये गीत तो सुनते ही बनता है।

बहुत ही खूबसूरत नगमा। साथियों, अब बात करते हैं उपकार फिल्म के मशहूर गीत की, मेरे देश की धरती। ये गीत आज भी सभी के दिल में ताज़ा है। आज भी महेंद्र कपूर के सर्वश्रेष्ठ गीतों में ये गीत गिना जाता है। ये गीत मनोज कुमार पर फिल्माया गया था। मनोज कुमार की बहुत से फिल्मों के गीत महेंद्र कपूर ने ही गाए हैं। साथियों, 1967 में आई फिल्म आदमी का गीत, कैसी हसीन आज बहारों की रात, पहले मोहम्मद रफ़ी और तलत महमूद के साथ रिकॉर्ड किया जाना था, लेकिन मनोज कुमार ने तलत की आवाज़ के बजाय कहा कि मुझे महेंद्र कपूर की आवाज़ चाहिए, और फिर इस गीत को महेंद्र कपूर और मोहम्मद रफ़ी ने मिलकर गाया। और साथियों, इस जुड़ाव के साथ ही महेंद्र कपूर अभिनेता मनोज कुमार की ऑन स्क्रीन संगीतमय आवाज़ के रूप में जाने जाने लगे। मनोज कुमार की इस जिद ने महेंद्र कपूर को अपने गुरु मोहम्मद रफ़ी के साथ गीत गाने का मौका भी दिया। तो साथियों, ये गीत सुनना तो बनता ही है।

मेरे देश की धरती, देशभक्ति के जज्बे से ओतप्रोत ये नगमा आज भी रूह में ताज़ा है। साथियों, महेंद्र कपूर मोहम्मद रफ़ी साहब के प्रति अपनी प्रशंसा हमेशा खुलकर व्यक्त करते रहे हैं। उन्होंने रफ़ी साहब का गैर फिल्मी गीत इलाही कोई तमन्ना नहीं उस संगीत प्रतियोगिता में गाया था जिसने उन्हें बहुत बड़ा ब्रेक दिलाया। बॉलीवुड में प्रवेश करते ही उन्हें अपने आदर्श से परिचय हुआ। फिल्म आदमी में एक गाने के अलावा उन्होंने कभी आधिकारिक तौर पर गायन नहीं किया साथ में, लेकिन महेंद्र कपूर ने रफ़ी साहब के साथ काम करने का

मौका नहीं छोड़ा। सूत्रों के अनुसार वो कोलकाता में उनके संगीत कार्यक्रम का हिस्सा थे, जहां उन्होंने कोरस में गाना गाया था। कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में कपूर ने मोहम्मद रफ़ी साहब से प्रभावित होने की बात स्वीकार भी की और यहां तक कहा कि वो अब तक के सबसे महान गायक थे। रफ़ी साहब ने भी उन्हें स्वीकार किया और महेंद्र कपूर के गाने बेहद पसंद किए। उन्होंने कभी एक दूसरे को प्रतिद्वंद्वी नहीं माना, बल्कि हमेशा एक दूसरे की कला का सम्मान किया। साथियों, इस खूबसूरत रविवार के दिन, इस संडे के दिन उनका ये गीत सुनना तो बनता ही है।

को प्यार हुआ हो मंडे इकरार हुआ बंडे ना जाने अब क्या होगा हो बंडे ना जाने अब क्या

होगा।

साथियों, बॉलीवुड के स्वर्णिम युग में शानदार संगीत का संगम रहा और महेंद्र कपूर की गीत भी इसका हिस्सा थे। उनकी गायन शैली बिल्कुल अनूठी थी। उनकी दमदार आवाज ने उन्हें भारत की जीवंत आवाज का खिताब दिलाया। उनका जादू हिंदी फिल्म जगत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों पर भी खूब छाया रहा। कपूर पहले भारतीय पार्श्व गायक थे जिन्होंने अंग्रेजी में भी गीत गाए। भारत सरकार ने संगीत जगत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए महेंद्र कपूर को वर्ष 1972 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। साथियों, महेंद्र कपूर के प्रसिद्ध गीत मेरे देश की धरती के लिए उन्हें 1968 में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित लता मंगेशकर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इन सब के अतिरिक्त उन्हें अपनी सुरीली आवाज के लिए कई फिल्मफेयर पुरस्कार और अन्य महत्वपूर्ण सम्मान भी प्राप्त हुए। उन्हीं की आवाज में ये गीत आपकी नजर।

साथियों, महेंद्र कपूर ने हमेशा संगीत को सर्वोपरि माना। उनकी सोच थी कि एक गायक को हर तरह के गीत को बिना किसी झिझक के साथ पूरी सरलता और गंभीरता के साथ गाना चाहिए। उन्होंने कभी भी गानों को लेकर नखरे नहीं किए और हमेशा संगीत निर्देशकों के निर्देशों का पूरा सम्मान किया। साथियों, उनकी सोच में देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। उन्होंने कई ऐसे गीत गाए जो जय जवान जय किसान और भारतीयता के प्रतीक बने। वे अपने गानों के जरिए देश में जोश, एकता और गर्व जगाने में विश्वास रखते थे, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण मेरे देश की धरती गीत रहा। साथियों, वो गुरु के प्रति भी असीम श्रद्धा रखते थे। महेंद्र कपूर दिग्गज गायक मोहम्मद रफ़ी को अपना आदर्श और गुरु मानते थे। उन्होंने रफ़ी साहब की गायकी से बहुत कुछ सीखा और हमेशा उन्हीं के दिखाए रास्ते और संगीत की सादगी में अपनी आस्था बनाए रखी।

साथियों, 27 सितंबर सन 2008 का दिन था जब शारीरिक रूप से महान गायक महेंद्र कपूर राम नाम में विलीन हो गए, पर उनकी आवाज़, उनकी छवि, उनकी विचारधारा सदा जीवंत रहेगी।

0: अब अपनी दोस्त हितेश को अनुमति दें आज का कार्यक्रम एक कलाकार यहीं संपन्न करने की। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार, उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया।
2: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिनों तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने राजा को मानसून के स्वागत का त्यौहार बताया। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले समग्र स्वास्थ्य, मानसिक आरोग्य और प्रकृति के साथ सामंजस्य को बढ़ावा देने में योग की भूमिका का उल्लेख किया है। कजाकिस्तान के दुशांबे में योग सत्र में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि योग उन शाश्वत मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है जो विश्व भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें, जीवन बचाएं। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his stay in France, he will join French President Emmanuel Macron in jointly inaugurating Bharat Innovates and hold bilateral talks with him on key areas of cooperation and global issues ahead of the upcoming G7 summit. Mr. Modi will subsequently travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. At the community reception held at the iconic Hotel Negresco yesterday, a large gathering of the Indian diaspora accorded a warm and enthusiastic welcome to the Prime Minister. Our correspondent has the details.
5: Prime Minister Narendra Modi will today join French President Emmanuel Macron for the inauguration of Bharat Innovates at the Palais des Expositions in Nice. The event will showcase India's startup and innovation ecosystem with around 120 Indian startups presenting innovations to global investors and technology leaders. Following the event, Prime Minister Modi and President Macron will hold bilateral talks at Villa Kirloz. The meeting will be the first since India and France elevated their ties to a special global strategic partnership earlier this year. The two leaders are expected to discuss cooperation in defense, technology, trade and innovation, besides exchanging views on key regional and global development. The Prime Minister will later depart for Slovakia for the second leg of his visit. This is Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
4: The White House has said that U.S. President Donald Trump will meet Prime Minister Narendra Modi and other world leaders during next week's G7 summit in France. A senior administration official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships and a range of global security challenges. Prime Minister Narendra Modi has expressed gratitude over the greetings of Serbian President Aleksandar Vučić over becoming India's longest-serving Prime Minister. In a social media post, Mr. Modi thanked President Vučić for his heartfelt greetings. He also fondly recalled the Serbian President's recent visit to India and the productive discussions held during the visit. Indian Space Research Organization ISRO Chairman V. Narayanan has informed that they have collaborated with the Department of Atomic Energy to develop an advanced artificial heating system that can protect lunar

मीडियम वेव 262.64 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर, डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन के 12:25 हुए हैं। हमारी दूसरी सभा के कार्यक्रम अब शुरू होते हैं। आरंभ में सुनिए बहनों का कार्यक्रम घर आंगन।

0: घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को कविता का नमस्कार और आराधना, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: कार्यक्रम सुन रही सभी बहनों को आराधना का भी नमस्कार और कविता जी आपको भी मेरा नमस्कार।
0: और बहनों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सभी आगे निकलना चाहते हैं और इसी वजह से अक्सर दुर्घटनाएं हो जाती हैं और कई बार पीड़ित जनों का रक्त अधिक बह जाने के कारण उन्हें रक्त चढ़ाना पड़ता है और ये रक्त देते हैं रक्तदाता। और
1: विश्व रक्तदाता दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाता है कविता, और इसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादकों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और निस्वार्थ भाव से रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को धन्यवाद देना।
0: बिल्कुल सही। और रक्तदान से दुर्घटनाओं, सर्जरी, कैंसर उपचार, थैलेसीमिया और अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को नया जीवन मिल जाता है।
1: और इस बार का जो थीम है कविता, वो है मानवता की एक बूंद रक्तदान करें, जीवन बचाएं।
0: बिल्कुल सही। और देखो, रक्तदान करने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो जो बीमारी से पीड़ित हैं उनको नया जीवन मिल गया, और इसी के साथ जो रक्तदान कर रहे हैं रक्तदाता हैं उनके लिए भी ये बहुत ही लाभदायक होता है। जैसे रक्तदान करने से शरीर में जो अतिरिक्त आयरन होता है वो कम हो जाता है और उससे हमारे जो दिल है, हमारा हार्ट है, उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है। और इसी के साथ नई रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को भी बढ़ाता है ये।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और नियमित रूप से रक्तदान करने वाले जीवन रक्षक नायकों के प्रति एक आभार व्यक्त करता है ये दिन, कि उनको भी सम्मान मिलता है जो रक्तदाता होते हैं।
0: हाँ।
1: उनको भी खुशी मिलती है कि चलो हमारा जो खून हम रक्तदान कर रहे हैं वो किसी काम आ रहा है,
0: किसी के काम आ रहा है, तो एक भावनात्मक संतुष्टि जो है वो मिलती है रक्तदाताओं को।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं।
0: और इसी के साथ आराधना, हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं
1: जी,
0: वो हमारे घर की नींव होते हैं, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग ही हैं जो हमें हर बात सिखाते हैं और इनका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है।
1: वो कहते हैं ना, जैसे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं घर में एक बड़े बरगद की तरह से होते हैं,
0: बिल्कुल
1: जो घर
0: सही,
1: को बहुत संभाले हुए होते हैं। कोई भी घर की समस्या है या कोई और प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से निपटा सकते हैं उनको, क्योंकि वो उस चीज़ से निकले हुए होते हैं।
0: बिल्कुल सही। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जाने या अनजाने अपने बड़े बुजुर्गों का महत्व नहीं समझ पाते और उनके साथ बुरा व्यवहार करने लगते हैं, और इसीलिए विश्व वरिष्ठ जनों के प्रति अभद्रता विरोध दिवस हम आने वाले 15 जून को मनाएंगे।
1: और इसके लिए इसीलिए जागरूक किया जाता है जो बुजुर्ग हैं उनके साथ शारीरिक, मानसिक, वित्तीय व दुर्व्यवहार के प्रति समाज को जागरूक करना, क्योंकि जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं वो बहुत ही सम्मान के लायक हैं, इज्जत के लायक हैं।
0: बिल्कुल सही, क्योंकि अगर हम उनका सम्मान करेंगे, और हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना उनके सम्मान के लिए, सिर्फ अपनी जो बिजी लाइफ है हमारी उसमें से थोड़ा सा समय निकाल के हम अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठ जाएं और वो खुश हो जाते हैं।
1: और इसका एक फायदा और भी है कविता, कि हम बड़े बुजुर्गों के पास बैठेंगे, उनका सम्मान करेंगे, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, बच्चे हैं, वो भी यही सीखेंगे,
0: वही भी यही सीखेंगे।
1: उनके पास उनसे बातें करनी है, उनको समझना है, है ना।
0: हाँ बिल्कुल। और जो घर के हमारे इम्पोर्टेंट मुद्दे होते हैं थोड़ा सा उनके ऊपर उनसे बातचीत कर ली जाए तो वो तो वैसे ही खुश हो जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कह रही है।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत, बहुत ही खूबसूरत, इससे
1: बिल्कुल
0: ज्यादा
1: सही।
0: शब्द मेरे पास नहीं है।
1: हाँ, और आराधना, नारी जो है परिवार की धुरी है,
0: ये तो
1: अगर
0: बिल्कुल सच्चाई है ये तो।
1: हाँ, और अगर नारी स्वस्थ रहेगी तो परिवार स्वस्थ रहेगा।
0: और परिवार स्वस्थ रहेगा तो समाज स्वस्थ रहेगा।
1: बिल्कुल सही। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपनी बहनों को सुनवाते हैं बातचीत, जिसका विषय है स्वस्थ नारी स्वस्थ समाज। डॉक्टर पुष्पा दहिया के साथ बातचीत की है अर्चना मिश्रा ने।
2: बहनों, आज घर आंगन कार्यक्रम में हमने एक ऐसा विषय रखा है जिसका हम सबसे ताल्लुक है, स्वस्थ नारी स्वस्थ समाज। अगर नारी स्वस्थ होगी बहनों, हम सभी जानते हैं, तभी एक स्वस्थ समाज की हम कल्पना कर सकते हैं। तो ये जानकारी हम लेंगे डॉक्टर पुष्पा दहिया से कि एक नारी कैसे स्वस्थ रहे, कैसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, इस बारे में। और डॉक्टर पुष्पा दहिया विभाग अध्यक्षा हैं, महिला रोग एवं प्रसूति विभाग PGIMS रोहतक में। डॉक्टर साहिबा, फिर से आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। पहले भी आप बहनों से मुखातिब होती रही हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से।
3: बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना जी, आपने मुझे यहाँ निमंत्रण दिया।
2: एक नारी स्वस्थ कब रहेगी, जब उसको कोई रोग नहीं होगा?
3: अगर घर में कोई भी महिला अगर अस्वस्थ है तो पूरा ही परिवार गड़बड़ा जाता है। ये हम सबको मालूम है कि हम एक दिन भी अगर बीमार हो जाते हैं तो हमारे बच्चे, हमारे घर, हमारी जो परिवार के बाकी सदस्य हैं उनमें रूटीन के कामों में खराब हो जाता है कि वो काम नहीं।

0: कर पाते हैं, विपत्तियां आती हैं। तो स्वस्थ नारी तभी रह सकती है कि जब उसमें कोई भी रोग नहीं हो, तो हम कहते हैं कि नारी स्वस्थ है और वो अपनी दिनचर्या का पूरा काम कर सकती है। स्त्री विभाग की अध्यक्ष हूँ तो मैं आज बात करूंगी कि स्त्री रोगों से संबंधित। तो जो आमतौर पर हमारे पास महिलाएं आती हैं जो हमारे ओपीडी के वक्त में, तो वो बहुत इस तरह आती हैं कि जी हमें पानी पड़ रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, या माहवारी जो है बहुत ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है। तो हर महिला को ये पता होना चाहिए कि कौन सा जो डिस्चार्ज है, जो पानी पड़ रहा है योनि द्वार से, वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है।
1: जी डॉक्टर साहिबा, सही आपने कहा कि बहुत बड़ी तादाद में हमारी बहनें डिस्चार्ज की समस्या से ग्रस्त रहती हैं। तो इसको हम बांट लेते हैं कि बच्चों को अगर होता है डिस्चार्ज तो वो किस तरह का है, मध्यम आयु वर्ग में जो आती हैं हमारी बहनें उनको डिस्चार्ज होता है तो उसका क्या अर्थ होता है एडल्ट एज में, और उसके बाद ये भी सुनने में आता है डॉक्टर साहिबा कि मेनोपॉज के बाद भी बहुत सारी बहनों को ये दिक्कत आती है, तो क्रम से ले लेते हैं।
0: तो अगर हम क्रम से चलें तो इस तरह है कि जो हमारी प्यूबर्टी एज ग्रुप, जैसे ही कोई भी लड़की जब वो युवा अवस्था की तरफ चलती है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ हार्मोन्स जो हैं हमारी बॉडी में एक्टिव होते हैं, और वो हार्मोन्स जब काम करना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग, एक पिट्यूटरी की ग्रंथि होती है, ओवरीज हैं जिसको अंडेदाने कहते हैं, वो सब एक लाइन में काम करते हैं एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में। तो उससे क्या होता है कि जो हमारी महावारी का क्रम है वो शुरू होना होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो हमारी ऑर्गन्स हैं, हमारी जो ग्रंथियां हैं, वो कुछ तरह का एक डिस्चार्ज, स्त्राव पैदा करती हैं, और वो जो स्त्राव पैदा होता है वो एक नॉर्मल होता है। तो हम सभी बहनों को ये पता होना चाहिए जब भी हमारे बच्चे आते हैं कि मम्मी जो हमारी पेंटी है वो गीली हो रही है या उसमें कुछ हमें चिपचिपा सा आ रहा है, तो हमें उनको बताना होता है। तो हमारे एक ही लक्षण है, एक सिम्टम है कि जो हमारा बच्चा है वो बालावस्था से और युवावस्था की तरफ जा रहा है, तो ऐसे में ये एक नॉर्मल है। लेकिन ये नॉर्मल एबनॉर्मल कब हो जाता है कि जब अगर किसी भी महिला, किसी भी बच्चे को जो पानी पड़ रहा है, गीलापन है, जो उसकी पेंटी पे डिस्चार्ज आ रहा है, अगर उसमें वो बहुत मात्रा में आता है
1: जी।
0: या उसमें कोई बदबू आती है, या बच्चा जो ऐसे कहे कि जी मेरे को नीचे की तरफ योनि द्वार की तरफ खुजली हो रही है
1: जी।
0: तो हमें सोचना चाहिए कि ये एक एबनॉर्मल है या बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो सकता है।
1: अच्छा।
0: तो ऐसे में हमें डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। तो लेकिन इसमें ये नहीं है कि इससे हमें सावधानियां ये बरतनी है, जब ये शुरू होता है क्रम
1: जी,
0: उस वक्त बच्चों को हमें अच्छी हाइजीन के बारे में बताना है,
1: साफ सफाई
0: के बारे में। तो साफ सफाई के बारे में क्या है कि बच्चे को रोज अंडरवेयर चेंज होना चाहिए, और हमें ये ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये बच्चे जो बालावस्था से युवावस्था की तरफ जा रहे हैं और किशोर अवस्था की तरफ, तो इसमें हार्मोन के जो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो उसमें हमें उनको और भी तरह की एजुकेशन देनी है।
1: अच्छा।
0: कि अपने अंगों से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है, और एक बार सुबह ही सिर्फ जब बच्चा जब नहाता है या युवती नहाती है तो उस टाइम ही एक बार साबुन और साफ पानी से धोना है, उनको बार बार धोना नहीं है। क्योंकि कुछ महिलाएं हम जब ओपीडी में होते हैं तो बताते हैं कि जी हर बार जितनी बार भी वो पेशाब करने के लिए जाती हैं तो उसके बाद पानी से धोती हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा नॉर्मल बैक्टीरिया है वो डिस्टर्ब हो जाता है। हर हमारे वजाइना में एक नॉर्मल फ्लोरा भी होता है, डिस्टर्ब अगर हो जाता है तो भी चांसेस इन्फेक्शन के और बढ़ जाते हैं
1: जी।
0: तो इसलिए हम महिलाओं को ये बताते हैं कि बार बार धोना नहीं है, एक बार सुबह नहाते हुए धोना है, और एक बार रात को सोने से पहले अच्छे से पानी से, साफ पानी से अगर धो लेती हैं तो वो बहुत अच्छा है
1: जी।
0: अगली बात अगर आप करते हैं युवावस्था से, जब ये तो हो गया कि जब बालावस्था से युवावस्था की तरफ,
1: ये व्यसंधि से जो प्यूबर्टी स्टेज है उससे आगे
0: आगे जब जाते हैं
1: किशोर अवस्था
0: में, तो उस वक्त भी, क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि जो उस वक्त तक उनकी शादी हो जाती है, किशोर जैसे 18 साल से ऊपर अगर है उनकी अगर शादी हो जाती है, तो उसके बाद भी उनको अगर वो कहते हैं कि जी पानी पड़ता है, तो हमें देखना है कि अगर वो कि सेक्सुअली एक्टिव है कि नहीं है। अगर शादी हो चुकी है, सेक्सुअली एक्टिव है, तो अगर डिस्चार्ज करती है तो हमें सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो सेक्स के थ्रू इन्फेक्शन फैलता है, तो उस दौरान हमें ये देखना होता है और मरीज से पूछना होता है कि उसके पास क्या बदबू आती है उसके जो पानी पड़ता है, या उसको बहुत ज़्यादा खुजली होती है। अगर इस तरह का है तो उसको ज़रूरी है कि वो एक स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाके दिखाए। तीसरी अवस्था जब है, या इसमें सिर्फ पानी पड़ता है तो वो किस तरह का पड़ता है, गाढ़ा पड़ता है, कोई बहुत ज़्यादा खुजली होती है, या उसके साथ खून का स्त्राव तो नहीं है, ये चीज़ें हमें पूछनी होती है। अब आप तीसरी जब बात अवस्था की बात कर रहे थे कि जब सब बच्चे पैदा हो गए हैं, जैसे 40 से 50 की उम्र में,
1: हाँ प्रौड हो गई हैं,
0: प्रौड हो गए हैं, और उस वक्त उनको पानी का स्त्राव रहता है
1: जी।
0: तो उसमें अगर क्या वो पानी का स्त्राव जो है उसमें खून की मात्रा तो नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसी हमने महिलाएं देखी हैं कि जो ये कहती हैं कि जी ये थोड़ा थोड़ा सो लाल जैसा पानी तो बहुत लंबे समय से आ रहा था, तो जो लाल पानी आना होता है वो एक नॉर्मल नहीं है
1: जी,
0: वो एक एबनॉर्मल है। और उस एबनॉर्मल में हमें देखना है कि कोई उस महिला को कोई ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ उसको बच्चेदानी के मुंह का या बच्चेदानी के अंदर कोई रसौली हो सकती है, किसी प्रकार का कैंसर हो सकता है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन, तो उसको ज़रूर दिखाना चाहिए। तो हमारी महिलाओं को ये पता होना चाहिए कि किस तरह का जो पानी है उसको हम नॉर्मल गिनते हैं, और किस तरह का पानी जो है जब उसमें कोई बदबू आ रही है, खुजली हो रही है, या उसमें खून का थोड़ा सा धब्बा साथ में लग रहा है, तो वो नॉर्मल नहीं है, तो हमें महिलाओं को समझाना
1: जी। डॉक्टर साहिबा ये जानना चाहेंगे कि जो स्त्राव हो रहा है महिला को, अगर वो गाढ़ा भी नहीं है, थोड़ा पतला है लेकिन बराबर हो रहा है, तो क्या वो ठीक है?
0: तो ऐसा है कि देखो, जैसे कि हमारा मासिक धर्म होता है, तो हर मासिक धर्म में जो हमारे बीच के दिन होते हैं उसमें हम अंडा बनता है
1: जी,
0: तो जब अंडा बनता है, अंडा बनने के बाद जब फूटता है, उस दौरान जो प्रेगनेंसी के लिए चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उस वक्त जो एक अंडा जब निकल जाता है तो पानी आता है, उससे ये होता है कि जब इस टाइम अगर कोई भी महिला संभोग करेगी तो बच्चा ठहरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वो जो गीलापन है, जो वो एक हफ्ते के लिए रहता है, वो एक नॉर्मल गीलापन है, ना उसमें बदबू आती है, ना उसमें इचिंग होती है
1: जी। बहने ये ध्यान रखें कि अगर जो स्त्राव आपको हो रहा है, डिस्चार्ज जो है, अगर वो बदबूदार है, गाढ़ा है, गुलाबी रंग का है, या उसमें आप देख पाती हैं कि उसमें खून है, तो इसके लिए आपको सतर्क होने की ज़रूरत है और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। ठीक बात आपने बताई डॉक्टर साहब। ये तो हमने डिस्चार्ज की बात की, और कौन कौन से रोग एक महिला को हो सकते हैं जिनसे उसको सावधान हो जाना चाहिए, हाँ, लक्षण पहचान कर?
0: जैसे कि एक महिला को अगर मासिक धर्म बहुत बार बार आता है, महीने में 2-3 बार आ जाता है
1: जी,
0: या जब मासिक धर्म आता है तो गांठें गिरती हैं। देखो, मासिक धर्म में ये ऐसा होता है कि 4 से 5 दिन, और आप लगा सकते हैं कि 21 से 35 दिन का एक हम नॉर्मल साइकिल लेते हैं, 28 दिन का एक नॉर्मल साइकिल होता है, लेकिन एक हफ्ता ऊपर और नीचे अगर होता है तो उसको हम नॉर्मल गिनते हैं, और 4 से 5 दिन तक महिलाओं को ब्लीडिंग होती है, मासिक धर्म होता है। लेकिन इस मासिक धर्म में गांठें नहीं आनी चाहिए, जैसे कि महिलाओं अगर कतरन आती है, गांठें आती है, इसका मतलब ये है कि उनको ज़्यादा खून पड़ रहा है और इसमें कोई गांठ हो सकती है, बच्चेदानी में कोई रसौली हो सकती है, जिसको हम फाइब्रॉइड कहते हैं आम भाषा में, या उसके साथ साथ उनको बहुत दर्द हो रहा है, या हमेशा नीचे की तरफ पेट में के नीचे वाले हिस्से में हमेशा दर्द रहता है, या जब महीना आता है उन दिनों में बहुत दर्द रहती है, तो उस अवस्था में उनको सतर्क रहना चाहिए और स्त्री रोग विशेषज्ञ से जांच लेनी चाहिए।
1: खून का स्त्राव सामान्य होना चाहिए, थोड़ी सी भी क्लोटिंग अगर वो महसूस करती हैं बहनें तो ज़रूर सतर्क रहें, अपनी बेटियों से भी जानकारी लें कि उनको किस तरह से डिस्चार्ज होता है मंथली, और अपने बारे में भी सतर्क रहें जी। बहुत अच्छी बात। इसके अलावा डॉक्टर साहब और कौन सी बीमारी बहनों को हो जाती है?
0: अगली बीमारी है कि जब इस एज से वो थोड़ा सा आगे जाती हैं तो उनको अगर संभोग करने के बाद अगर ब्लीडिंग होती है
1: जी,
0: तो उनको बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब उनके बच्चेदानी के मुंह पे कुछ जख्म है, या एक ये लक्षण है उनको बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हो सकता है, जिसके लिए उन्हें बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए और इमीडिएटली उनको जाके स्त्री रोग विशेषज्ञ से दिखाना चाहिए ताकि ये पता लग सके कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर नहीं है। आजकल जो एक कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम है जिसको पैप स्मियर, आज के टाइम में सभी लोगों को पता है कि जो कैंसर, जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है वो एकदम से नहीं होता, पहले इसमें इन्फेक्शन थोड़ा होता है, थोड़ा धीरे धीरे करके वो कैंसर का रूप धारण करता है और उसको लगने में 8 से 10 साल लग जाते हैं। कोई भी महिला को अगर संभोग करते हुए अगर खून आता है, थोड़ा सा पिंक कलर का डिस्चार्ज आता है, तो उसको इमीडिएटली डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए और वो उससे हम जांच कर सकते हैं कि वो इन्फेक्शन है या कैंसर का अर्ली स्टेज है। और कैंसर की अर्ली स्टेज का बहुत ही अच्छे से इलाज हो सकता है, उसमें कोई भी ऑपरेशन करके या सेक लगा के हम इलाज कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, ये बच्चेदानी के कैंसर की बात आपने की, ओवेरियन कैंसर जिसे अंडेदानी का कैंसर कहते हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं?
0: अंडेदानी का कैंसर जो है इसको हम हमारी भाषा में कहते हैं साइलेंट किलर।
1: जी
0: मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि इसमें बहुत सारे जो सिम्टम्स जो आते हैं ना, लक्षण जो होते हैं वो ना माहवारी से मिलते हैं ना डिस्चार्ज से मिलते हैं।
1: अच्छा।
0: उसमें बहुत सारी महिलाओं का क्या होता है कि जी पेट में अफारा आ गया, जी खट्टी डकारें आ गई हैं, उसमें जो है कि जो खाने से संबंधित जो लक्षण है वो ज़्यादा होते हैं।
1: अच्छा।
0: जिसकी वजह से जो हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास नहीं जाती और वो दूसरे किसी फिजिशियन के पास चली जाती हैं, और जो आम फिजिशियन है वो इस बारे में सोच नहीं पाते हैं कि ये लक्षण ओवेरियन कैंसर के भी हो सकते हैं।
1: जी।
0: तो इसीलिए हम ओवेरियन कैंसर को साइलेंट किलर कहते हैं।
1: जी।
0: क्योंकि इसमें कोई ऐसा लक्षण ही नहीं आता जिसकी वजह से महिला डॉक्टर के पास जाएगी।
1: जी।
0: वो ऐसे वेग सिम्टम्स होते हैं। तो जिन महिलाओं को फैमिली में किसी को भी कोई जेनिटल ऑर्गन्स, किसी को यूट्रस का, बच्चेदानी के मुंह का, ओवरी का, या घर में किसी को जो हमारी पाचन क्रिया है गट से संबंधित, अगर फैमिली में कोई भी कैंसर की हिस्ट्री है, तो उन महिलाओं को ओवेरियन कैंसर के लिए टाइम टू टाइम जांच करवानी चाहिए, जिससे कि हम उसको एट द अर्लीस्ट स्टेज हम उसको पकड़ सके और उसका इलाज कर सके।
1: बहुत अच्छी बात आपने बताई डॉक्टर साहिबा। तो बहने ये जान लें कि अगर आपका पेट निरंतर ख़राब है, आपको बार बार गैस जैसी शिकायतें हैं, या खाना ठीक से हजम नहीं हो रहा, या एसिड
0: अफारा
1: जिसको आप बोलती हैं वो आपको बार बार आता है, तो ये आपको अंडेदानी के कैंसर का संकेत हो सकता है। ज़रूरी नहीं है पर संकेत हो सकता है, और आपको महिला रोग विशेषज्ञ से मिलने की ज़रूरत है। हमने अंडेदानी के कैंसर की बात की, गर्भाशय की कैंसर की हमने बात कर ली, डिस्चार्ज की बात होगी डॉक्टर साहिबा, तो और किस तरह की बीमारियां बहनें डेवलप कर सकती हैं?
0: मीनोपॉज के बाद भी कुछ हमें ये उनको बताना चाहिए कि 1 साल के बाद कभी भी, जब महीना बंद हो जाता है उसके बाद कभी भी अगर कोई बार बार पानी गिरता है या रक्त स्राव होता है तो वो एक एबनॉर्मल है। ऐसी महिलाओं को जांच जल्दी जल्दी करवानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर एक बार महीना बंद होने के बाद आ जाते हैं तो कुछ महिलाएं सोचती हैं कोई बात नहीं, चलो एक दो बार आ गया कोई बात नहीं, लेकिन 1 साल के बाद कभी भी ऐसा होता है तो एक ये किसी भी तरह का अंडेदानी का, बच्चेदानी का, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का एक लक्षण हो सकता है, तो उसको हमेशा दिखाना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि जब ये महावारी खत्म हो जाती है तो हमारी बहुत सारी महिलाओं को, क्योंकि हार्मोन्स खत्म हो जाते हैं बॉडी में से, तो एक तरह के हमारे को सिम्टम्स आते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन आना, नींद ना आना, बहुत ही ज्यादा मूड के डिस्टर्बेंसेस होते हैं। वो कहती है मैं सारा दिन ही सोती रहती हूँ जी, मैं सबसे लड़ती रहती हूँ, तो एक ही हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो ऐसी अवस्था में हमें उनको एक बार डॉक्टरी जांच करवानी चाहिए और हम उनको सलाह देते हैं कि कैसे वो अपनी योग क्रिया से, अपनी एक्सरसाइज से और कुछ खान पान, तो उनसे आप जो बॉडी में जो हार्मोन्स की कमी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अंडेदानी काम करना बंद कर देती है एक उम्र के बाद। जब अंडेदानी काम करना होता है जो उससे ईस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए, जो कि महिलाओं को ठीक रखता है, जो हमारी चमकती हुई चमड़ी है, स्किन है, वो उस हार्मोन की वजह से होती है।
1: अच्छा।
0: तो जैसे जैसे हम ओवरी का हार्मोन खत्म होने लगता है तो हमारा ढलना शुरू होता है, जो चमड़ी है वो बहुत थिन हो जाती है, जल्दी कटने फटने लग जाती है। तो हम उन महिलाओं को बताते हैं कि इस अवस्था में जो चिड़चिड़ापन है उनसे कैसे निजात पा सकती हैं, योग क्रिया करें, वॉक करें, और खाने में जैसे कि हम बताते हैं जो तिल हैं हमारे,
1: जी
0: जो तिल हैं उसमें कुछ मात्रा में फाइटोइस्ट्रोजेंस होते हैं। अगर कोई भी महिला रोज 2 चम्मच अगर तिल खाती है तो कुछ अमाउंट में उनको फाइटोइस्ट्रोजेंस चले जाते हैं।
1: अच्छा।
0: तो वो फाइटोइस्ट्रोजेंस वो कन्वर्ट करते हैं जो कि हमारे जो ईस्ट्रोजन हार्मोन की तरह हैं। वो कुछ महिलाओं को एक ये हमारा भ्रम है कि गर्मी में तिल नहीं खाने हैं, उससे गर्मी हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये आप अगर दवाई के तौर पे अगर लेती हैं तो इससे जो कुछ हार्मोन्स की कमी हो जाती है, जो हमारे फाइटोइस्ट्रोजेंस हैं बॉडी में, वो उनको मिलेंगे।
1: जी, ये बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब आपने कि अगर आपको अपनी त्वचा को चमकदार बना के रखना है और जवां दिखाई देना है तो बहने तिल अपना लें।
0: हाँ।
1: अच्छा, रजो निवृत्ति यानी मेनोपोज की आपने बात की डॉक्टर साहब, मेनोपोज के बाद क्या ये जो पेप्समियर टेस्ट की आपने बात की थी वो करवाते रहना लाजमी रहता है या उसके बाद हम बंद कर दें? हाँ।
0: हर महिला को जब से वो सेक्सुअली एक्टिव होती है, अगर हम इस तरह से बात करें, 25 साल की उम्र के बाद से हर 3 साल के बाद पैप्समेयर करवाना चाहिए।
1: 25 साल
0: के बाद से हर 3 साल। और जब भी कभी, आजकल तो क्या है कि एक और HPV टेस्ट के बारे में आ गया है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, अगर वो हर 5 साल के बाद आप टेस्ट करवा लेते हैं तो आपको ये स्क्रीनिंग के लिए हर 3 साल बाद पैप्समेयर नहीं करवाना पड़ता। जो लोग नहीं करवा पाते हैं वो हर 3 साल बाद करवाते रहें। और हम ये कहते हैं कि 65 की एज ग्रुप तक हमें इसको देखना चाहिए,
1: पेप्समियर। अच्छा डॉक्टर साहब, पेप्समियर जो टेस्ट है वो इतना ज़्यादा विश्वसनीय है कि अगर इसमें कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं आता तो महिला का स्वास्थ्य ठीक है?
0: ठीक रहता है। तो उसमें क्या रहता है कि देखो, जो पेप्समियर का है, हम इसमें कुछ कोई दर्द नहीं होता। बच्चेदानी के मुंह से हम एक पानी टेस्ट के लिए भेजते हैं और जिसमें अर्लीस्ट स्टेज ऑफ, अगर कुछ कैंसर की बहुत अर्ली स्टेज होती है, जिसको कैंसर कहने से पहले प्री कैंसर स्टेज, उस स्टेज पे हम इनको पकड़ सकते हैं और इनका इलाज संभव होता है।
2: बहनों, अभी आपने सुनी बातचीत जिसका विषय था स्वस्थ नारी स्वस्थ समाज। डॉक्टर पुष्पा दहिया के साथ बातचीत कर रही थी अर्चना मिश्रा।
3: और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं
2: और फिर हम बात करते हैं परिवार की। जिस घर में प्यार, सम्मान और अपनापन होता है, वो घर असली जन्नत बन जाता है। और दुनिया में सबसे बड़ी ताकत एक जुड़ा हुआ परिवार ही होता है।
3: ये तो है ही। साथ में जो दिन मनाने जा रहे हैं, पारिवारिक प्रेक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने जा रहे हैं।
2: हाँ।
3: और यह दिन हर साल 16 जून को मनाया जाता है। और यह दिन विदेशों में काम करने वाले उन प्रवासी कार्य करने वालों का है जो प्रयासों और अपने द्वारा अपने परिवारों को भेजे जाने वाले धन का योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है।
2: बिल्कुल सही। और इसी के साथ आराधना हम मना रहे हैं गुरु हर गोविंद जयंती, जो नानक शाही कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष जून और जुलाई में मनाया जाता है। और उन्होंने मुगलों और हमलावरों से बचने के लिए सिख समुदाय का सैन्यकरण किया, और जब वो सिर्फ 11 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मुगल बादशाह ने हत्या कर दी थी। और उन्होंने कहा कि बुरी ताकतों के आगे
3: गुरु गोविंद सिंह जी सिख पंथ के एक नए क्रांति की शुरुआत की थी। 2 तलवारें धारण की, पीरी और मीरी। पीरी आध्यात्मिक सत्ता का प्रतीक है और जो मीरी है वह सांसारिक और राजनीतिक शक्ति का प्रतीक है।
2: बिल्कुल सही। और इसी के साथ हम आने वाली 20 जून को मना रहे हैं विश्व शरणार्थी दिवस।
3: संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित यह दिन मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के उन लोगों को साहस और संकल्प का सम्मान कराना है जिन्हें संघर्ष, हिंसा, उत्पीड़न को कारण अपना घर और देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था।
2: बिल्कुल सही। और इसी तरह से आने वाली 18 जून को हम गुरु अर्जुन देव शहीदी दिवस मना रहे हैं।
3: गुरु अर्जुन देव मना रहे हैं और इसके लिए
2: सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी, और उन्होंने धर्म और सच्चाई के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। और
3: गुरु अर्जुन देव जी के बारे में मुख्य जानकारी, प्रथम सिख शहीद गुरु अर्जुन देव जी ने सिख इतिहास के पहले शहीद थे। मुगल सम्राट जहांगीर ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था और फिरौती न देने के बाद इस्लाम धर्म स्वीकार करने के कारण उन पर अत्याचार किए और उन्हें लाहौर के एक भीषण गर्मी में तपती हुई रेत और लोहे की चादर पर बिठाया गया था और उबलता पानी डालकर इनके ऊपर अत्याचार किया गया था।
2: और बहनों, अब घड़ी की सुई हमें कार्यक्रम के बारे में बता रही है और जल्दी से हम बहनों को बता देते हैं गर्मी के मौसम में बर्फ का गोला। और इसके लिए बहनों, बर्फ को लेकर उसको किसी कपड़े में रखकर अच्छे से कूट लें और कूटने के बाद उसे किसी कटोरी या गिलास में डालकर चीनी का शरबत मीठा डाल दें उसके अंदर, थोड़ा सा काला नमक और नींबू निचोड़ दें और उसके बाद उसको खाएं, ठंडा ठंडा खुद भी खाएं, बच्चों को खिलाएं और गर्मी से राहत पाएं।
3: और इसी के साथ कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, बहनों को कहते हैं नमस्कार।
2: नमस्कार।

0: कार्यक्रम घर आंगन, ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन का एक बजने वाला है, थोड़ी ही देर के बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। इसके बाद 1:05 पर प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। फिलहाल हिंदी समाचारों का वक्त है, तो चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। इस दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप, निवेशक और टेक्नोलॉजी लीडर्स शामिल होंगे। कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग और वस्त्र परीक्षण सहित प्रमुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। ये केंद्र उन्नत विनिर्माण सुविधाएं, तकनीकी सहायता और उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक नर्तक नर्तकियों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की। इस सामूहिक प्रस्तुति को गिनीज विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और सांस्कृतिक विरासत के इस उत्सव का आयोजन भारत की संगमम ग्लोबल अकादमी और श्रीलंका की समगमिज लिया ने किया। फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने एक एक गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया।

0: आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by...
2: थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले 1:05 पर हिंदी में हमारे केंद्र से, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप पंकज धीमान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारत भाग्य विधाता फिल्म को हरियाणा में कर मुक्त करने की घोषणा की है। कल शाम पंचकूला में अभिनेत्री एवं सांसद कंगना रनौत की भारत भाग्य विधाता फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग रखी गई थी। फिल्म देखने के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 26/11 के मुंबई हमले की एक घटना पर आधारित यह फिल्म बहुत प्रेरणादायी है। इस तरह की फिल्में मुसीबत के वक्त नागरिकों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास करवाती हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म बताती है कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझेगा तो विकसित भारत का लक्ष्य जल्दी हासिल होगा। उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों को ऐसी प्रेरणादायक फिल्म देखनी चाहिए। मुख्यमंत्री के साथ उनकी धर्मपत्नी सुमन सैनी, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, श्याम सिंह राणा, राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा, विधायक सतपाल जांबा, रणधीर पनिहार और शक्ति रानी शर्मा सहित कई नेताओं ने भी यह फिल्म देखी। इसके अलावा हरियाणा के गृह सचिव सुधीर राजपाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, वित्तायुक्त सुमिता मिश्रा समेत कई अधिकारी भी फिल्म देखने पहुंचे थे। फिल्म की अभिनेत्री कंगना रनौत भी इस विशेष स्क्रीनिंग में शामिल रहीं। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम HSIIDC के प्रबंध निदेशक को साहा औद्योगिक विकास केंद्र में तुरंत प्रभाव से फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी खड़ी करने के दिशा निर्देश दिए हैं ताकि आपात समय में तुरंत कार्रवाई की जा सके। श्री विज ने कल साहा औद्योगिक विकास केंद्र में ग्लासवेयर फैक्ट्री में लगी आग की घटना का जायजा लेने के उपरांत यह निर्देश दिए। उन्हें औद्योगिक क्षेत्र में दमकल विभाग की कोई गाड़ी तैनात न होने की जानकारी मिली थी। उन्होंने कहा कि गाड़ी में पानी भरने के लिए वहां पानी का बोर भी करवाया जाए। पत्रकारों से बातचीत में अनिल विज ने कहा कि साहा औद्योगिक केंद्र में लगभग 300 यूनिट हैं और वहां काफी श्रमिक काम करते हैं। उन्होंने कहा कि यहां दमकल विभाग का इंतजाम होना जरूरी है और गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह भी है। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने 21 जून को राज्य भर में पुनः आयोजित होने वाली नीट की परीक्षा के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने परीक्षा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, पुलिस उपायुक्तों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह भी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता या गड़बड़ी ना हो। उन्होंने सभी परीक्षा केंद्रों पर बिजली, पीने के पानी, साफ सफाई, चिकित्सा सहायता और अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने उपायुक्तों को पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन विभागों के अधिकारियों के साथ तालमेल बनाने के निर्देश भी दिए ताकि परीक्षा का संचालन सुचारू रूप से हो सके। पर्यावरणीय स्थिरता और परिचालन दक्षता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए चंडीगढ़ औद्योगिक एवं पर्यटन विभाग निगम ने अपने 3 प्रमुख होटलों, होटल माउंट व्यू, होटल शिवालिक व्यू तथा होटल पार्क व्यू में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG का उपयोग शुरू कर दिया है। निगम के प्रवक्ता ने कहा कि PNG को अपनाना निगम की स्वच्छ और हरित ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो सतत शहरी विकास के लिए सरकार की परिकल्पना के अनुरूप है। विश्व रक्तदाता दिवस पर हरियाणा की जेलों में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। कल भी इस उपलक्ष्य में विभिन्न जेलों में आयोजित रक्तदान शिविरों में अधिकारियों, कर्मचारियों एवं परिजनों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। कल विभिन्न जेलों से 525 यूनिट रक्तदान किया गया। फरीदाबाद निवासी एवं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के ग्राम रामगढ़ के रहने वाले मनीष ठाकुर ने 12 से 14 जून तक थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित मिस्टर एंड मिस यूनिवर्स 2026 ओपन बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में दुनिया के विभिन्न देशों से आए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान

हमारे सभी सुनने वालों को अर्चना मिश्र का नमस्कार। महीने का दूसरा रविवार है आज और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं ईमेल आधारित आपके अनुरोध पर कार्यक्रम। हमारे सभी सुनने वालों का हम इस कार्यक्रम में तहे दिल से अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारी ईमेल आईडी आप नोट करें, rohtakradio@gmail.com। पहली मेल जो हमारी स्क्रीन पर है वो है जगराओं के हमारे नियमित श्रोता हैं सुनील पाठक, कमल सुच्चा पाठक, दीपिका और गव्या मल्होत्रा। आप सभी सुनना चाहते हैं दो बदन फिल्म का गीत जब चली ठंडी हवा, और कोई भी गीत सुनवाने के लिए मेल आ रही है दुल्हापुर मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, काजल, सीमा, मानवी, तन्नवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह की। और ऐसी ही एक मेल है झज्जर हरियाणा के बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत, मयंक भाटिया द्वारा भेजी हुई। और एक और मेल है, देखते हैं किसकी है। ये हैं हमारे सुनने वाले धनोरी तेलीवाला से, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। तो आप सभी के लिए दो बदन फिल्म का ये गीत।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: अगले गीत की मेल हम शामिल कर रहे हैं चौधरी वास के राजू अग्रवाल, केशव दक्ष और प्रियांशी की भेजी हुई दिल ही तो है फिल्म का गीत आप सुनना चाहते हैं। यूं ही दिल ने चाहा था रोना लुराना, तेरी याद तो बन गई एक बहाना, कुछ ऐसा है ये गीत। पूरा गीत हम भी सुनेंगे आपके साथ। कोई भी गीत सुनवाने के लिए वारणा शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान इंदुरकर, तेजस्वनी चौहान, माई इंदुरकर, बेबी शौर्या, श्रेयश, अंकिता और अनिकेत चौहान की मेल हमें मिली है। और तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना की मेल आई है। और एक और मेल है कोई भी गीत सुनवाने के लिए, वो है साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली के गुरमीत सिंह मीता की। आप सभी के लिए दिल ही तो है फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं।

ये मेल हम शामिल कर रहे हैं दरियापुर बाभली के हमारे सुनने वाले हैं गजानन येले, नवदीप विश्वदीप और अवंतिका येले। आप सुनना चाहते हैं इज्जत फिल्म का गीत जिसके बोल हैं ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं हम क्या करें। तो सुनवा रहे हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

0: अगली मेल हम तक पहुंची है। बागपत यूपी के हमारे सुनने वाले हैं संजय, नमन और अपार ढींगिया। बॉबी फिल्म का गीत आप सुनना चाहते हैं, मुझे भी कुछ कहना है, तो आपकी पसंद पूरी कर रहे हैं, सुनिए।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: आपके अनुरोध पर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। एक अंतराल के बाद आपसे फिर मुलाकात करते हैं।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं ईमेल आधारित आपके अनुरोध पर कार्यक्रम। हमारी ईमेल आईडी है rohtakradio@gmail.com। ये मेल जो हमारी स्क्रीन पर है वो है कुड़ी सेक्टर जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र, मोहिनी, कल्पित, गर्वी और हिमाक्ष की भेजी हुई। आप सभी सुनना चाहते हैं साथी फिल्म का गीत, जिसके बोल हैं ये कौन आया रोशन हो गई महफिल जिसके नाम से। कोई भी गीत सुनवाने के लिए हमें मेल भेजते हैं हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम से जगदीश धाकड़ नायमा, रंजूबाई, युवराज और शिवांगी धाकड़, नथाना के हरजिंदर छिंदा, जसबीर जस्सी, सीता और गीता, वर्णीखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। आप सभी के लिए साथी फिल्म का ये गीत।

अगली मेल हम शामिल कर रहे हैं डेर पाटन गुजरात के धीरज वी रब्बारी और सचिन की भेजी हुई प्रेम पर्वत फिल्म का गीत आप सुनना चाहते हैं, ये दिल और उनकी निगाहों के साए। इनके साथ आइए हम भी सुनते हैं।

अगली मेल, नरवेल महाराष्ट्र के पीएस नहावकर, निर्मला विशाल नहावकर और मलकापुर के नारायण इंगले सोपान और आशीष इंगले की हम शामिल कर रहे हैं। एक सपेरा एक लुटेरा फिल्म का गीत आप सुनना चाहते हैं, तेरा भी दिल किसी पर आए, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गाया हुआ यह गीत है। और कोई भी गीत सुनवाने के लिए सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके या शोधरा श्राव्या रामटेके की मेल हमें मिली है। और एक और मेल है जो कोई भी गीत सुनवाने के लिए हम तक पहुंची है, मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी सौरभ, शाइना शर्मा और निवान शर्मा ने भेजी है। और मोहल्ला हलवायान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन प्रवीण, रोज़ी प्रवीण, बिट्टू भैया, सजदा रानी और हिना कौसर ने भी कोई भी गीत सुनवाने के लिए मेल हमें भेजी है। और एक और मेल हम देख रहे हैं, ये है इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश कार्तिक और परी खर्चे, आपके साथ स्वाति प्रयाग चौधरी भी हैं, कोई भी गीत सुनवाने के लिए आपने लिखा है। तो आप सभी के लिए एक सपेरा एक लुटेरा फिल्म का ये गीत सुनवा रहे हैं।

रघुनाथपुरा राजस्थान के हमारे सुनने वाले हैं, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, इनकी मेल हमें मिली है। दो रास्ते फिल्म का गीत ये सुनना चाहते हैं। ये रेशमी जुल्फ़ें, इन्हें देखकर जी रहे हैं हम, ये गीत है ऐसा। और कोई भी गीत सुनवाने के लिए हमें मेल मिली है पोफाली ज़िला यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत, अर्पिता की। और ये है मेल पजोनिया ज़िला जालौन यूपी के सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंसोलिया की। कोई भी गीत सुनवाने का इन्होंने भी अनुरोध किया है आप सभी के लिए। दो रास्ते फिल्म का ये गीत।

ये था दो रास्ते फिल्म का गीत। और अब कार्यक्रम का जितना भी समय बचा है वो समर्पित है हमारे उन श्रोताओं को जिनकी ईमेल तो हमें मिली हैं लेकिन उनकी पसंद के गीत हम तक उन तक नहीं पहुंचा पाएंगे क्योंकि समय जो है हमारा वो कम है, लेकिन आप श्रोताओं ने भारी संख्या में हमें ईमेल्स भेजी हैं। तो आपके नाम आपको बता देते हैं, मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, कैथल के डॉक्टर अमनदीप, और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज की मेल हमें मिली है, और हंडीखेड़ा ज़िला सिरसा के राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा ने मेल भेजी है, भटिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, करणवीर, दीपेंद्र, वीरेंद्र, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन, अभिजीत की मेल है, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा की मेल हम तक पहुंची है, कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे, जाधव, प्रशांत, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, सर्वत देशमुख, प्रणाली, सानवी, कल्पना देशमुख ने मेल भेजी है और समस्त वायाल परिवार आपके साथ है, चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह।

करनाल के हमारे सुनने वाले हैं सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, किरण ठाकुर, जग्गी दुआ, प्रेमलता दुआ, मीनाक्षी तिवारी, नरेंद्र तनेजा, हरिपाल कौर, आशा गुगलानी, सोनिया कालका, विपाशा शर्मा। हिंगोली महाराष्ट्र से शाजी पोड़खे, नंदा हनुमान, उत्तम जमथाड़े की मेल है और आप हैं राजेश ढांढा जींद से, बुलढाणा वड़शिंगी महाराष्ट्र से, अमोल मानकर, शोभाताई, दीपाली, श्लोक कुमार, बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकुला दामोदर और सुमेत कुमार की मेल है। जींद से हमारे बहुत पुराने सुनने वाले हैं सुरेश मल्होत्रा, अमित, दर्शना, सौम्य, जयविश और जया मल्होत्रा। कैथल से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा, भाना ब्रह्मनान नरवाणा से मेघराज शर्मा, गौरव, सौरभ, विजय, अजय, जितेंद्र, जोगेंद्र शर्मा। संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि, शीतल, इनकी मेल हमें मिली। और मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग की मेल है। नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र जी शाह। जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश, दीपक कुमार, पूजा खटक। लोहारू हरियाणा से बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी, सुरेंद्र, बरखा, योगेंद्र, नरेंद्र कुमार। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से, हांसी से सुभाष योगी, सुशील योगी, बब्बू डब्बू, राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी। और आप हैं फ्रांसिस से राजकुमार डूडी, प्रमोद, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। बांडी वाला फजिल का, पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश, रजत, गरिमा बगड़िया। और ये मेल है जनकपुरी, सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलिस डिकेस्ट्रो की भेजी हुई। मोहला के हमारे सुनने वाले राजकुमार ढोचक, गीता मनसानिया, सुभाष, उषा, राहुल, आरती, रोहित और देव ढोचक हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक। और आप हैं चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सैयद अब्बासी, निगहत, प्रवीण, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के अन्य सदस्य। भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल, कुणाल मेहरा। सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। खंडवा से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू। बरकाकाना से अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, कमल कुमार, अफजाल मल्लिक। बढ़वा से खरगोन से मेल है प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली की। भिवानी से जितेंद्र खेड़ा हैं। टोरोवाल से गगनदीप थांदी, तृप्ता, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, वामिका, वाणी। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति, ओजस्वी यादव। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिप्पा, कपिल, ईशान, पूजा परिहार। और इनके बाद अगली मेल दिख रही है अमरावती के सिद्धार्थ गोंडाने, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा गोंडाने की भेजी हुई। धाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे। खंडवा से विजय महोबिया, कविता महोबिया, पेंटर बाबू की मेल फ्लैश हो रही है। गुवाहाटी असम से हरेन पांड्या, नरेन पांड्या, वीरेन पांड्या। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाना, आरती गोरी, ओम कुमार सुरलकर। पांडुपिंडारा से बादल सिंह गिल, कमलेश, टीनू, नीरू, प्रीति, डॉक्टर अंकित और डॉक्टर वानिका गिल। वांडी खामगांव से ये मेल आई है अनंता वाढे, रामेश्वर, शुभम, साक्षी, खुशी और समस्त वाढे परिवार के सदस्य। गणेशवाड़ी कोल्हापुर से संभाजी सुतार, चेतन, सारिका सुतार। और जबलपुर मध्य प्रदेश के अशोक कुमार, अंकिता सिंह, प्रीति, ऋतु सिंह, कृषि गुड़िया, वेदा सिंह हैं। और आप सभी की मेल्स हमने शामिल की हैं, जितनी भी मेल हमारे सामने फ्लैश हो रही थी, आप सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आज का ये कार्यक्रम जो है हमारा आपके अनुरोध पर यहीं पर समेट लेते हैं।

आपने आपके अनुरोध पर कार्यक्रम सुना। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। 2 बजने वाले हैं, थोड़ी देर के बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। इसके बाद 2:15 पर हिंदी में समाचार आप सुनेंगे। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जा रहे हैं।

0: कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया। श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
1: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
2: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। समिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध कराई जा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुँच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायोग संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मानसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
4: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, अरिसा पीठा, चकुली पीठा और मसूर रजा पान की खुशबू फैली हुई है। रजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप खेत खलिहान कार्यक्रम सुनेंगे।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
1: कार्यक्रम सुनने वाले सारे वन भाई ने अशोक भाई ही राम राम भाई मौसम में परिवर्तन हुआ है और ये गर्मी तो कुछ रात मिली है और यूँ कह सकें भाई इसने गर्मी से तो यूँ क्या अपनी खेती ने भी अपने पशुओं ने भी अपना खुद यानी मौसम में परिवर्तन होने थे सारी चीज़ें रात मिली है इसमें और ये अब देखो ये कितने दिन चलता है और यूँ का यूँ सीधा यूँ कह सकें कि भाई मानसून ही आ जाए तो इस दौरान बहुत बढ़िया रहना है तो बड़ी मुश्किल हो रही है आपने देखा हुआ साथ में ये है कि भाई ये जो पानी की समस्या वह बहुत भारी होती जा रही है हर बार देखा कि जो पानी की समस्या वह बढ़ती जाने लग रही है चाहे वो पीने के लिए है चाहे वो कृषि के लिए है चाहे वो किसी दूसरे कामों के लिए यानी जो पीने का पानी है वो बहुत कम होता जा रहा है उस ओर हमारा ध्यान बहुत कम है किसान भाइयों का तो इब हमने किसान भाइयों ने देखो एक तो अपना ये करना है कि वह जो मौसम में परिवर्तन होने लग रहे हैं उसके लिए बताओ कई बार बोला कि हम अपने सारे के सारे जिम्मेवार हैं उसमें चाहे किसान भी आ गया चाहे मजदूर भी आ गया चाहे कोई भी आ गया शहरी आ गया कौन सा भी क्षेत्र आ गया सभी आ गए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाओगे तो मौसम में इतना वो नहीं होगा और मौसम का जो तापमान हो अनुकूल रहेगा ठीक रहेगा वो तो इस ओर हमने ध्यान देना ज़रूरी है यूँ ही इसमें देखो भाई अगर ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाओगे तो ना तो इसमें ज़मीन पर इतनी गर्मी होगी और बरसात भी अपने समय पाओगी पूरी बरसात होगी लेकिन हमने उस ओर ध्यान नहीं दिया हमने वृक्षों की कटाई ज़्यादा से ज़्यादा कर दी और दूसरे नए लगाए नहीं तो इसलिए ये मौसम में परिवर्तन होने लग रहा है आप देखो हो कि वह गर्मी का जो समय है वो लंबा होने लग रहा है और बढ़ता जाने लगा हर साल बरसात का कति एकदम कम हो गया सीमित हो गया यूँ ही सर्दी का सीमित हो गया तो इसका मतलब ये है जो ये भारी परिवर्तन होने लग रहा है इसके लिए हमें खुद जिम्मेवार हैं और इस ओर हमने अब हर नागरिक ने इस ओर ध्यान देना पड़ेगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने का काम है भाई जिस तरह बरसात का मौसम आओगे बरसात के मौसम का जो संरक्षण करना है ये बरसात के पानी का वो भी हमने ध्यान देना है क्योंकि ये पानी है जितना बरसात आओ बरसात जिस भी जो आओ है थोड़ी मोटी उसका सारा का सारा पानी इन ड्रेनों से लेकर अपना सीधा उसमें समुद्र में चला जाए और वो पानी वहाँ जाके पीने लायक रहता ही नहीं तो इसलिए हमने इसको ज़मीन का में जो बरसात का पानी आया है इसको संरक्षित करना है चाहे तो ज़मीन में कर ले चाहे अपना कोई भी इस तरह के पक्के वो तालाब से बना ले और टंकियां बना ले उसमें अपना संरक्षण कर लें इसका क्योंकि भाइयों इसके लिए बहुत ज़रूरी है और किसान भाइयों के लिए है कि देखो कम से कम ऐसी फसलें लगाओ जिसमें कम से कम बरसात का पानी चाहिए यानी पानी कम से कम चाहिए और जिस तरह हम धान लगा लेते हैं धानों में कितना पानी चाहिए भाई पानी की बर्बादी बहुत घनी हो रही है और ये यूँ कह सकें कि वह धरती के हर जीव के लिए है वो नुकसानदायक पानी की कमी होगी तो क्योंकि देखो आप भी जानो पानी के बगैर हम रह नहीं सकते तो पानी तो बहुत ही ज़रूरी है और गर्मी के मौसम में आप देखा हुआ गर्मी में पानी के बगैर तो रह ही नहीं जाएगा और वैसे तो किसी सर्दी में भी चाहे कोई भी मौसम नहीं रहा जा पानी के बगैर पानी तो हमें पीना पड़ेगा और हर जीव के लिए चाहिए पानी तो जितना हो उसका इसका पानी का हमने संरक्षण करना है इसको बचाना इसको रखना है और इसको बर्बाद नहीं होने देना है देखा कई बार भाई पानी की बर्बादी किस तरह करें जैसे गांव में देखा या हर जगह देखा टूटी हुई चाली जाएँ चाहे शहरों में भी है और उनको कोई बंद करने वाला नहीं है और एक चीज़ ये मान कर चलते हम कि भाई ये कि वो मेरी जिम्मेवारी थोड़ा है कि दूसरा करें जिम्मेवारी हम सभी की है और जहाँ भी पानी फालतू में चल रहा है और पानी पानी क्यों चाहे कोई भी चीज़ है चाहे बिजली फालतू चल रही है तो हमारा वो फर्ज बनता है उसको रोक के ये देश की संपत्ति है यूँ नहीं कह इसका ये इसका जल रहे तो इसका मीटर में खर्चा होगा इसका ना ना ये नहीं यह अपने देश की संपत्ति है और हर नागरिक का फर्ज बनता है उस देश की संपत्ति की रक्षा करना और ये जिस तरह वे भाइयों बात करा, मैं चाहे हम कोई भी खेती के साथ साथ धंधा करा, उस धंधे में भी हमने मन लगा कर काम करना पड़ेगा और करना चाहिए भी भाई। इसमें चाहे उसमें खेती के साथ अतिरिक्त व्यवसाय अपने मुर्गी पालन है, मछली पालन है, मधुमक्खी पालन है, शुक्र पालन है, डेयरी फार्मिंग है, जो भी काम हम करा हैं यानी वो मन से करना पड़ेगा। और पानी की बात बता तो पानी के तो इन बसारे लिए जीव जरूरी है, जीव को तो हर जीव को जरूरी है, तो इसलिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा पानी का संरक्षण करना और रखना है। तो आज का हमारा विषय भी ये रहेगा इन दिनों मुर्गी घरों की देखभाल और मुर्गियों की हम के देखभाल कर सकें, खासकर गर्मियों में तो उनके लिए कितनी भारी समस्या हो जाए। लेकिन उससे पहले आपने रागनी सुनवाएंगे और गायक कलाकार रहेंगे पाले राम दैया और उनके साथी।

भजन रागनी सुनी और जिक्र कर रहे थे इन दिनों मुर्गी घरों की देखभाल। भाई गर्मी का मौसम है और ये तो चलो रात मिली है, लेकिन गर्मी में ये पक्षी हैं इनकी रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। और इन दिनों में तो खास करके क्योंकि गर्मी है, गर्मी में तो उनके लिए भाई हवा भी चाहिए, ठंडक भी चाहिए, पानी भी चाहिए और जो खाना दाना है उनका वो भी ज़्यादा चाहिए, उनको अलग से चाहिए। और चाहे दिन में है चाहे रात में, रात में भी गर्मी हो जाए तो गर्मी से उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए ये भैया देखो, एक तो थोड़ा ऐसा जब मान लिया हमने ठंड रखा है उनके लिए, अगर जब गर्मी होगी तो गर्मी में वो बेचैन हो जाएंगे, और बेचैन होंगे तो पक्षी आपस में लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो वो क्या होगा, उनका आपस में एक दूसरे वो घायल हो जाएंगे, और घायल हो जाए तो फिर आप ये देखो कि वह कितना नुकसान होगा। तो इस चीज़ से बचाव करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, पानी का ऐसा कर लें, देखिए पानी अपना ताज़ा पानी रखा, और पानी अगर जब मान लिया गर्म होगा तो पानी वो पीऊँगे नहीं, और बार बार पानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाऊँगे तो उन्हें बढ़िया रहेगा। और जिस तरह देखा भैया का उसमें है अपना ऐसा इंतज़ाम करें कि पक्षी अपना जितना चाहो उतना पानी पी लें अगर अंदरे हैं, साथ में ये भी देखें कि अगर जब मान लिया ज़्यादा गर्मी हो गया पक्षी आपस में लड़न लग जाएंगे, लड़ने में तो उनकी फिर क्या होगी कि उसने पानी ने उसमें कर लेंगे, उसमें बिछावन में गिर लेंगे, और फिर बिछावन गीला हो जाएगा तो फिर उनके लिए दिक्कत होगी भाई। और फिर खाने दाने में भी है, खाने दाने में भी उनका अलग से अपना इंतज़ाम करना है, और थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ा देना है क्योंकि गर्मी में ऐसा भी है कि भाई पक्षी खाए जाएंगे तो बढ़िया रहेगा उसमें। और अगर मान लिया उसमें खाने में थोड़ी मोटी सी दिक्कत होगी तो उनमें क्या होगा, फिर वही बात है कि पक्षी आपस में बेचैन होने में फिर दिक्कत बनेगी। जिधर से धूप आ रही है वैसे तो देखो जब निर्माण करा जाए बनाया जाए उसी टाइम पर ध्यान रखा जाए कि वह धूप कम से कम लागे उसमें। साथ में उनके अगर जाए मान लिया हमने वृक्ष लगा रखे हैं तो और बड़े बड़े वृक्ष हो रहे तो और भी बढ़िया, क्योंकि एक तो उनके वृक्ष हैं कि अच्छी ठंडी हवा होगी और साथ में उसने छत न ठंड रखेंगे। और फिर उसके बाद जो बराबर के हैं जो झाँखी लगा रखी हैं जाली लगा रखी है उन जालियाँ में भी अपना ये ध्यान रखें कि भाई अब धूप आ रही है धूप सीधी आ रही है तो उनके ऊपर अपने जो आपने जाली लगा रखी है या पल्लियाँ भी लगा रखी हैं जो भी आप कर रहे हो उसके अंदर उनका पूरा पूरा रखें, यानी सीधी धूप अपने पक्षी आकर ना लागण दें, बढ़िया रहेगा। छत्ता का भी है भाई, वो छत्ते इशारा रखें कि उसमें जो अपने मुर्गी घर है उनकी छत्तों के ऊपर ये देखें कि भाई या तो कुछ इसी चीज़ रख लें कि उसमें वेंटिलेशन सा ऐसा होकर कि वह ज़्यादा एकदम धूप उनके ऊपर गिर कर ना हो और ज़्यादा गर्म ना हुआ छत, उस और भी हमने ध्यान रखना है, क्योंकि चाहे ऊपर से है चाहे नीचे है चाहे चारों तरफ से किसी तरफ से है अगर ज़्यादा दिक्कत होगी गर्म होगी तो पक्षी उसमें बेचैन हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए पानी का अपना इंतज़ाम रखना कि पानी पिलाते रहें जितना उसके, और पानी का भी आपने ये रखना है ये नहीं है कि वह टंकी है टंकी में रखे और टंकी वो गर्म हो गया पानी और वो उनके लिए आ रहा है तो फिर वो गर्म पानी वो पी नहीं पाऊँगे। अगर उन्हें खाने पीने के लिए भरपेट उनका नहीं होगा तो भाइयों आप ये देखो फिर उनमें बढ़ोतरी नहीं होगी, उनका विकास नहीं होगा, और विकास नहीं होगा तो फिर भाई के आमदनी भी नहीं होगी उसे, तो इस ओर अपने विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। खाने पीने में एक ये है कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा जितना उसके जो पौष्टिक आहार है पौष्टिक आहार लाऊँ और भरोसे जगह पर लाऊँगा अपना, ये ना हो कि चलो कोई बात नहीं ले आए भरो आहार उनका ठाकर डाल दिया रो कर दिया, देखिए पौष्टिक है। और उनमें यह भी ध्यान रखना है कोई किसी प्रकार का जो उनका भोजन है खाना बना रखा है उनका उसमें कोई जीव का ना हो या फफूंद फामूंद कोई ये चीज़ ना लग रही हो, क्योंकि जीव है आप ये देखोगे उनमें अगर जब मान लिया कोई इस तरह का छोटा मोटा हावी उसके चला गया, और इनमें देखो आप देखो पक्षियाँ में है जो उड़नी बीमारी है ये एक दूसरे को क्योंकि साथ रहे हैं वो इकट्ठे खाऊँ पीऊँ हर सारी वो काम करें तो उसमें एक से दूसरे में वो बीमारी चली जाएगी और फिर आप ये देखो कि वह कितना भारी नुकसान हो जाएगा। तो इन चीज़ों तो आपने बचना है, और समय रहते आपने अगर मान लिया कोई छोटी मोटी आपने दिक्कत लग गए तुरंत डॉक्टर से उसमें सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है। बाकी ये है कि वह अपने दोनों तरफ से उसके जो पर्दे लगा रखे हैं जो पल्ली लगा रखे हैं उन्हें भे भी ले, ज़्यादा लू पड़ रही है तो उन्हें भे दे ताकि बेन और अच्छे वो बड़े बड़े आजकल वो कूलर आ रहे हो कूलर चलाए उसमें पक्षियाँ खाते। और साथ में जब अगर बड़े बड़े वृक्ष हैं तो उन वृक्षों में देखो भाई आप करो कि ठंडी हवा होगी और उसके ऊपर इतना गर्म नहीं होने देंगे ना लू लागण देंगे अपने,
पक्षी सुरक्षित रहेंगे, ठीक रहेंगे, वो अपना आराम से खाओ पियोंगे और बैठेंगे आराम करेंगे और आपने उसका अपना पूरा उत्पादन उसमें देंगे। इस और हमने मतलब पूरा वो ध्यान रखना, ये ना थोड़ी सी भी लापरवाही अगर हम कर दें तो हमने सीधा सीधा नुकसान होगा उसमें। खाने पीने का पूरा इंतजाम रखें, पानी का ये जरूर ध्यान रखें भाई, पानी साफ हो, सुथरा हो और गर्म ना हो, पानी ताज़ा हो तो और भी बढ़िया, ना तो पानी का टेम्परेचर सा देख लेंगे वो पक्षी आराम से पी लेंगे, उसमें कोई किसी प्रकार के उनमें वो दिक्कत ना हो, अपना भरपेट के पानी पी लेंगे। और साथ में ऐसा ये रखें उसमें जो अपने मुर्गी घर हैं उनकी साफ़ सफाई का भी पूरा ध्यान रखें, ये ना हो कि भाई उसमें कोई मान लिया इसे कोई अड़ंगा इधर उधर से गिरा हुआ है या उनका बिछावन वो गीला हो रहा है या पक्षी इधर उधर से वो घूम रहे हैं वो ना हो, और कोई दूसरा जो बाहर का आया हुआ है उसने भी ये देखें कि भाई सीधा उसमें अपना मुर्गी घर में ना आने दें, और बाहर उसके तो बाढ़ने में अपने उसमें वो चूना बिछाए रखें ताकि अगर कोई भीतर जाए तो उसके लिए एक कीटाणु रहित होकर उसमें जाओ अपने, ये ध्यान रखना है। तो हमें जैसे बातें की ओर ध्यान रखा है तो भाई हम पूरा उसकी कोई शक नहीं भावना आराम से पूरी की पूरी आमदनी इसमें ले लेंगे। और बात एक और रागनी की हुई थी, इब क्या आपने रागनी सुनवा गायकला करेंगे पाली राम दैया और उनके साथी।

भैया ने रागनी सुनी, गायक कलाकार थे पाली राम दैया और उनके साथी। और भाइयों जकर कर रहे थे इन दिनों मुर्गी घरों की देखभाल। भाइयों इसमें ये बताया कि बापते भाई एक तो पानी का पूरा इंतजाम रखें, खुआन पान का पूरा रखें और उनके जो भोजन है भोजन में उसका पूरा पूरा उसे रखें कि भाई और ज़्यादा पौष्टिकता ले आऊँ इसमें, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में पक्षी इतना अपना विकास नहीं कर पाएंगे। और ये दोनों तरफ से जब भी आप दिन में है जब धूप निकले उसके वो दोनों उसके लगा दें, पलिया लगा दें, अच्छा उन्हें भे ब्या करने और अपने कूलर वगैरह वो चलते रहने रखने। साथ में आप ये देखें अगर जब कोई मान लिया माड़ी मोटी भी उनको दिक्कत हो जाए तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाते रहे। कई बार ये होता है कि हमें लापरवाही बरत देते कि डॉक्टर को ना ध्यान नहीं देते, तो भाई इन बातें की ओर ध्यान देंगे तो मुर्गी घरों से मत देख कर मुर्गियों से अच्छी पैदावार ले लेंगे। और भाई कार्यक्रम में समय रहा समाप्त। सारे बाण भाइयों ने राम राम।

आपने खेत खलिहान कार्यक्रम सुना। मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर डीटीएच और न्यूज़ ओन AIR पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। 3 बजे हैं हमारी दूसरी सभा के कार्यक्रम अब खत्म होते हैं। FM बैंड 103.5 MHz पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का रिले। तीसरी सभा में शाम 5:30 पर मीडियम वेव 262.67 मीटर डीटीएच और न्यूज़ ओन AIR पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है। शाम के 5:30 और 12 सेकेंड हुए हैं। हमारी तीसरी प्रसारण सभा के कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं। सभा की शुरुआत में प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा संसार।

0: कार्यक्रम युवा संसार सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके साथी रिशिता का नमस्कार।
1: आपके साथी विशाल का भी प्यार भरा नमस्कार।
0: साथियों, हम सभी जानते हैं आज है 14 जून और प्रत्येक वर्ष 14 जून को ही विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन सभी वॉलंटरी ब्लड डोनर्स के लिए और उन सभी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करने के लिए समर्पित है जो निस्वार्थ भाव से अपना रक्तदान करके असंख्य जीवन बचाते हैं। इस दिवस की स्थापना विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा की गई थी और इसकी तिथि महान वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टेनर की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में चुनी गई, जिन्होंने ABO रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी। साथियों, रक्तदान को महादान कहा जाता है क्योंकि एक बार दिया गया रक्त किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति, नई माँ, कैंसर रोगी या ऑपरेशन के दौरान किसी की जान बचा सकता है।
1: बिल्कुल, इस दिन का उद्देश्य लोगों को रक्तदान के महत्व के प्रति जागरूक करना है, रक्तदाताओं का सम्मान करना है। रक्तदान एक महान और मानवता की सेवा करने वालों में से कार्य में से एक है। जैसे कि ऐसे समय में रक्तदान किसी व्यक्ति का जीवन बचा सकता है जिस समय व्यक्ति को रक्त की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो। हमें रक्तदान के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर करना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। रक्तदान वास्तव में महादान है क्योंकि यह किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का प्रदान करता है। विश्व रक्तदान दिवस हमें मानवता, सेवा और सहयोग का संदेश देता है। हमें नियमित रूप से रक्तदान करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने का संकल्प लेना चाहिए। रक्तदान करने से न केवल जरूरतमंद लोगों की जो है मदद हो सकती है, बल्कि रक्तदान करने से स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक स्वस्थ व्यक्ति सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकता है और कुछ समय बाद उसका शरीर पुनः रक्त की पूर्ति करने लगता है। इस दिन विभिन्न अस्पतालों, विद्यालयों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा विशाल ने कि रक्त का निर्माण नहीं किया जा सकता है दोस्तों, यह केवल दानी डोनर्स से ही आ सकता है। रक्तदान करना सबसे सरल तरीकों में से एक है जीवन बचाने के लिए। डोनर बनने के बारे में यदि आप सोच रहे हैं तो दान करने से पहले आप हाइड्रेटेड रहें, पहले से स्वस्थ भोजन करें, यदि आवश्यक हो तो अपनी पहचान साथ लेकर जाएं और अपनी स्थानीय रक्त सेवा से सलाह का पालन करें। इसी के साथ दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज कार्यक्रम है युवा पसंद, जो हर रविवार हम पेश करते हैं आप सभी के लिए। और आपकी फरमाइश का पहला गीत है फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से। आवाज़ें हैं सूरज जगन, जोई बरुआ, शंकर महादेवन की, संगीत है शंकर एहसान लोय का और बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने। और फरमाइश आई है
1: आज की, जो पहली फरमाइश है वो है करनाल से सुधीर नूतन, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा, हरिपाल रोड, मीनाक्षी तिवारी। कैथल से मधु नायक, रोहतक से महेंद्र शाह, हरेंद्र, जितेंद्र, हर्षित, मानसी।
0: साथ ही चरखी दादरी से आप हैं जगनेश सांगवान, गांव फ्रांसी से राजकुमार डूडी, प्रमोद पुष्पेंद्र, भिवानी से जितेंद्र खेड़ा और बगबुड़वा पथरिया से आप हैं नरेन और कुसुम नेताम। आइए साथियों, सुनते हैं आप सभी की फरमाइश का ये गीत।

0: साथियों, अभी हमने सुना ये गीत फिल्म ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा से। आवाज़ें थीं सूरज जगान और जोई बरुआ शंकर महादेवन की, संगीत था शंकर एहसान लॉय का और बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने।
1: साथियों, जो आज की अगली फरमाइश है वो है बेरडी से, हुक्म करमरकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची, तन्नु, कोटवा नारायणपुर, बाबा पट्टी बलिया से, ओम प्रकाश राय, उषा, अमित, हैप्पी, दुबिया निवेदा गाजीपुर से, प्रत्येक राय, रोशनी, प्रांजल।
0: खोखरा वाली गांव से विनोद, विशाल बरासा, विकास, रोशनी और शगुन बरासा। रायगढ़ से आप हैं पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह, लीलू सिंह और रितु सिंह। नंदा शहर से आप हैं सुरेंद्र संधु, अनिता, रोहित, रितेश, शिखा संधु, प्रतीक्षा और मैक्स। साथ ही महाराष्ट्र से आप हैं श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे।
1: इन्होंने गीत सुनना चाहा है फिल्म साजन से, गाया है अलका याग्निक ने, लिखा है समीर ने, संगीत दिया नदीम और शरवन ने। आइए साथियों, सुनते हैं गीत।

0: साथियों, अभी आपने सुना गीत फिल्म साजन से। गाया था अलका याग्निक ने, लिखा था समीर ने, संगीत दिया था नदीम और शरवन ने।
1: बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ, जिसकी फरमाइश आई है कैथल से अमनदीप, गांव राजापुर से नयन प्रकाश, शारदा, सीताराम, सतबीर, संतोषी, कविता और आरती मरकाम, साथ ही छत्तीसगढ़ से इंद्रमान सिंह, अनुपम राम सहोदर, गोविंदपुरा सीकर से आप हैं दातार सिंह शेखावत, संगीता तुषार और रिंकी शेखावत।
0: आदर्श गांव बल्याली जिला भिवानी हरियाणा से दर्शनलाल बंसल, सुदेश, प्रवीण, ममता, कमल, गर्विश, तमन्ना बंसल। बाटापारा दतरंगई से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर, दीपक, जावेंद्र। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना, योगेश, सौरभ, साइना, निवान।
1: ये गीत है फिल्म टाइगर जिंदा है से, आवाज़ है आतिफ असलम की, संगीत है विशाल शेखर का और बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने। आइए साथियों, सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गीत।

0: साथियों, अभी हम सुन रहे थे ये गीत फिल्म टाइगर जिंदा है से। आवाज़ थी आतिफ असलम की, संगीतकार थे विशाल शेखर और बोल लिखे थे इरशाद कामिल ने।
1: साथियों, अगली फरमाइश है वो है भटिंडा से, मंजीत कौर जोड़ा, करण वीर करण, दीपेंद्र वीरेंद्र, सिमरन प्रेम, गोला बाजार बक्सर से, अभिनंद आर्य, परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित।
0: साथ ही लुम्बिनी अकोला से राहुल बंसोड़, सम्यक, शरण और मीरा, कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन, मयंक शर्मा, महाराष्ट्र से निर्मला विशाल, साथ ही पंजाब से आप हैं सुवर्ण सिंह, दलजीत, राजदीप, गुरलाल, अविराज, गुरनूर और शुभदीप। साथियों, ये गीत है फिल्म हीरो से, आवाज़ है सलमान खान की, बोल लिखे हैं कुमार ने और संगीत दिया है अमाल मलिक ने।

0: साथियों, अभी आपने सुना गीत फिल्म हीरो से। गीत गाया था सलमान खान ने, लिखा था कुमार ने, संगीत दिया था अमाल मलिक ने।
1: साथियों, कार्यक्रम के अंत में एक बार फिर से हम आपको सलाह देंगे और ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है आप सभी को प्रेरित करने की कि रक्तदान जैसा महादान आप भी करें, क्योंकि एक बार दिया गया रक्त किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति, नई माएँ, कैंसर रोगी या ऑपरेशन के दौरान किसी की भी जान बचा सकता है। और हम सभी जानते हैं कि रक्त का निर्माण नहीं किया जा सकता, ये केवल आप जैसे दानी डोनर से ही आ सकता है। रक्तदान करना सबसे सरल तरीकों में से एक है जीवन बचाने के लिए। और यदि अगर आप भी डोनर बनने के बारे में सोच रहे हैं तो अपना स्वस्थ भोजन करें, आवश्यक हो तो अपनी पहचान लेकर जाएं, हाइड्रेटेड रहें, अच्छे से अच्छा खाना खाएं, अच्छे से अच्छा आप अपनी सेहत बनाएं, नियमित योग करें, तभी जब हमारी खुद की जान हम बचा सकेंगे तभी हम किसी और को स्वस्थ रखने में सफल हो पाएंगे साथियों। और इसी के साथ कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं और ऐसे ही उम्मीद है मिलेंगे आपसे फिर किसी दिन। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आपने सुना कार्यक्रम युवा संसार, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। शाम के 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार। समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर खासतौर से चर्चा हो रही है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तनकारी अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ भी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को एक ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि आज प्रश्न ये नहीं है कि भारत में नवाचार हो रहा है या नहीं, बल्कि प्रश्न ये है कि भारत के साथ मिलकर कौन नवाचार करे। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी का वहां पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित एक समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर में 125 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना ज्यादा धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को खारिज किया कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 के इंजन में खराबी आने की जानकारी दी है। इसमें सवार 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि ओमान के अधिकारियों के साथ तालमेल से बचाव अभियान जारी है। अंतालिया में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज बोमा देवरा और किशोरी कुमकुम मोहद ने स्वर्ण पदक जीते। फाइनल में रिकर्व मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओह ये जिन और किम जे डेओक को हराया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान से खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे जर्मनी का मुकाबला कुरासाओ से होगा। वहीं रात 1:30 बजे नीदरलैंड्स और जापान होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

पहले आज के शेष कार्यक्रम शाम 6:30 पर आप सुनेंगे एडक बास्टन बर्मिंघम स्टेडियम इंग्लैंड में खेले जाने वाले आईसीसी महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। रात्रि 11:10 पर आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा निर्मित कार्यक्रम में सशक्त भारत पर चर्चा। ये दोनों कार्यक्रम रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृषि जगत कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:20 पर। रात्रि 10:45 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। ये थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम।

अब सुनिए कल के कार्यक्रमों का विवरण। शाम 7:10 पर आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष विषय पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रसारित विशेष श्रृंखला में विदेश नीति पर बातचीत। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम। ये दोनों कार्यक्रम रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। साप्ताहिक समीक्षा आप सुनेंगे शाम 6:30 पर, जिसे रिले किया जाएगा आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से।

0: प्रातः 7:35 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुबह सवेरे। युवा साथी अपना कार्यक्रम युवा संसार सुनेंगे 5:30 पर। कृषि जगत कार्यक्रम किसान भाई सुनेंगे 6:20 पर। 7:00 होगा कार्यक्रम ग्रामीण संसार। खेत खलिहान कार्यक्रम सुनिएगा 2:30। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 12:30 पर। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में प्रातः 7:15 पर कलाकार होंगी दीपा शर्मा। इस कार्यक्रम में आपसे प्रातः सुनेंगे राग गुजर की तोड़ी। इसी कार्यक्रम में रात्रि 10:00 सुनिएगा राग यमन। लोक संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 8:30 पर। रात 8:25 पर होगा कार्यक्रम सुगम संगीत। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं प्रातः 9:00। दोपहर 1:10 पर। 7:45 पर। रात्रि 9:15 पर होगा कार्यक्रम एक फिल्म से। मनचाहे गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। ये थी हमारे केंद्र से आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब एक सूचना सुनिए। थाना अर्बन एस्टेट जिला रोहतक से प्राप्त सूचना अनुसार नंदिनी पुत्री जयबाबू दिनांक 11 जून से अपने घर से लापता है। इसका हुलिया आपको बता दें, रंग गोरा, गोल चेहरा, कद 4'6", उम्र 14 वर्ष। इसके बारे में किसी भी सूचना का आदान प्रदान करने के लिए थाना अर्बन स्टेट जिला रोहतक से संपर्क करें। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। 6:10 होने वाले हैं कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें रिले किया जाएगा आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से।
1: दीदी नौकरी लग गई।
2: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
1: पर दीप,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
2: अच्छा।
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: नमस्कार, यह आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप पंकज धीमान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार का 12 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर ने पलवल में बुद्धिजीवी समाज से संवाद किया और कांग्रेस द्वारा SIR पर सवाल उठाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद में 148 पात्र लाभार्थियों को 100-100 गज के भूखंडों की रजिस्ट्री प्रदान की। रेवाड़ी में मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन। श्री सतीश पूनिया ने कहा कि मोदी सरकार ने युवा, महिला, गरीब, किसानों सहित हर वर्ग के लिए काम किया। आज विश्व रक्तदाता दिवस पर हरियाणा में विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविर लगाए गए। जींद में मातृशक्ति ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया और हरियाणा पुलिस में कार्यरत फरीदाबाद निवासी डॉ. अशोक कुमार वर्मा पुलिस बलों में सर्वाधिक रक्तदान करने वाले कर्मियों में शामिल हुए। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राज्यसभा सांसद एवं हरियाणा प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी सुरेंद्र नागर व हरियाणा सरकार में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज पलवल स्थित महर्षि दयानंद चौक पर जिला प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। इसके उपरांत श्री सुरेंद्र नागर ने पंजाबी धर्मशाला में आयोजित बुद्धिजीवी सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सम्मेलन में राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन कर नागरिकों को सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों की जानकारी दी जा रही है और बुद्धिजीवी वर्ग से संवाद किया जा रहा है।
1: नरेंद्र मोदी जी की सरकार के ऊपर 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में और देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल भी पूरा हुआ है। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी विभिन्न कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित कर रही है, जिसमें स्वच्छता अभियान है, एक पेड़ माँ के नाम है, हमारे बुद्धिजीवी सम्मेलन है, हमारी अगर आप बताओ ऑर्गेनिक फार्मिंग है, हमारी जीरो बजट फार्मिंग के लिए काम कर रहे हैं हम लोग, योगा दिवस इसमें कार्यक्रम होगा, अन्य बहुत से ऐसे कार्यक्रम है जो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उसी के अंतर्गत आज पलवल में यहाँ बुद्धिजीवी सम्मेलन, एक पेड़ माँ के नाम और स्वच्छता अभियान में मैंने भी आज यहाँ भाग लिया।
0: पत्रकारों से सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हारने के बाद चुनाव आयोग और ईवीएम पर आरोप लगाना शुरू कर देती है, लेकिन जिन राज्यों में जीत के बाद सरकार बना लेती है वहां चुनाव आयोग व ईवीएम की बात नहीं करती। कांग्रेस द्वारा SIR पर प्रश्न उठाने को

0: यहां सरकार गरीबों, वंचितों और जरूरतमंदों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है ताकि प्रत्येक नागरिक सम्मानजनक जीवन जी सके। उन्होंने कहा कि भूखंड की रजिस्ट्री केवल कागजी दस्तावेज नहीं बल्कि लाभार्थियों के सुरक्षित और बेहतर भविष्य की आधारशिला है। इससे परिवारों को सामाजिक और आर्थिक मजबूती मिलेगी तथा वे अपने स्वयं के घर का सपना साकार कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश भर में करोड़ों परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज रेवाड़ी के एक स्कूल में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के प्रभारी एवं राजस्थान से नव निर्वाचित राज्यसभा सदस्य सतीश पूनिया ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए श्री पूनिया ने SIR की सराहना की। उन्होंने कहा कि SIR का उद्देश्य वास्तविक मतदाता के साथ साथ भारतीय नागरिक की भी पहचान करना है। उन्होंने कहा कि SIR के बाद से ही घुसपैठिए देश छोड़कर जा रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना का ही परिणाम है कि कांग्रेस राज में देश में दो ही एम्स थे, लेकिन गत 12 वर्ष में 15 एम्स तैयार किए गए हैं। इन्हीं में से रेवाड़ी जिले के माजरा गांव में बनने वाला एम्स भी है। इस एम्स से न केवल रेवाड़ी बल्कि पूरे हरियाणा, राजस्थान व उत्तर प्रदेश के लोगों को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्वच्छता अभियान, एक पेड़ माँ के नाम, बुद्धिजीवी सम्मेलन, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना सहित अन्य कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने युवा, महिला, गरीब और किसानों के लिए कार्य किया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे YouTube चैनल और X हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। आज विश्व रक्तदाता दिवस पर हरियाणा में विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविर लगाए गए। जींद जिले में भी विभिन्न स्थानों पर अनेक रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। जींद में देवी शक्ति सेंटर इकाई द्वारा मातृ शक्ति के सहयोग से एक विशेष रक्तदान शिविर लगाया गया। इस शिविर में नगर परिषद अध्यक्ष डॉ. अनुराधा सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। मीडिया से बातचीत में नगर परिषद अध्यक्ष डॉ. अनुराधा सैनी ने आयोजकों और रक्तदाताओं की जमकर सराहना की।
1: ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं सभी अपनी मातृशक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इन सभी आयोजककर्ता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने ऐसे शुरुआत करी। मैं कपल भी हैं और अनेक मेरी बहनें भी हैं जिन्होंने आज रक्तदान भी किया है। मैं एक डॉक्टर होने के नाते बता सकती, डिलीवरी के टाइम पे महिलाओं को खून की कितनी जरूरत पड़ती है, और आप अगर किसी को एक यूनिट रक्त अपना दान करते हैं तो वो किसी महिला की और उसके बच्चे की भी जान बचाने का कार्य करती है।
0: उन्होंने कहा कि आज देश की महिलाएं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में रक्तदान के पुनीत कार्य सहित हर क्षेत्र में योगदान दे रही हैं। आज विश्व रक्तदाता दिवस पर रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा नागरिक अस्पताल हिसार के चिकित्सक दल के सहयोग से हिसार मिलिट्री स्टेशन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में भारतीय सेना के जवानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और रक्तदान किया। शिविर में नागरिक अस्पताल के रक्त बैंक प्रभारी व वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुशील गर्ग ने बताया,
2: यही प्रयास है हमारा, जितने से जितने नए रक्तदाता हम जोड़ सके, क्योंकि खून का अभी तक हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। दान से ही हम खून की पूर्ति को कर सकते हैं कि जो भी 18 साल से 65 साल के बीच में है और जिनका वजन 45 किलोग्राम से ज्यादा है वो रक्तदान कर सकते हैं, और जितने हमारे मेल भाई हैं वो हर 3 महीने के बाद दोबारा से रक्तदान कर सकते हैं, और जितनी महिलाएं हैं वो हर 4 महीने के बाद। जरूरत है सिर्फ हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से ज्यादा होना चाहिए। कि आप अपने जन्मदिवस पे, कोई अपनी वर्षगांठ है उसमें जरूर इसको जोड़े रक्तदान से।
0: डॉक्टर सुशील गर्ग ने आमजन से नियमित रक्तदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि रक्त देने के 5 बड़े फायदे हैं। एक तो रक्तदाता की मेडिकल जांच होती रहती है, काला पीलिया, HIV, मलेरिया, सिफिलिस जैसी बीमारियों की जांच हो जाती है। अम्बाला में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा उपायुक्त एवं अध्यक्ष अजय सिंह तोमर एवं सचिव विजय लक्ष्मी के मार्गदर्शन में अम्बाला शहर के रेड क्रॉस भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का संचालन कार्यक्रम अधिकारी मनोज सैनी ने किया। शिविर में स्टार रक्तदाता रजिंदर गर्ग ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। डॉक्टर नीतू सचदेवा की अगुवाई में अम्बाला छावनी नागरिक अस्पताल की रक्त बैंक की टीम ने 26 यूनिट रक्त एकत्रित किया। सभी रक्तदाताओं को बैच प्रमाण पत्र

0: व स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। हरियाणा पुलिस में कार्यरत फरीदाबाद के सेक्टर 8 निवासी डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा देश के पुलिस बलों में सर्वाधिक रक्तदान करने वाले कर्मियों में शामिल हो गए हैं। वे अब तक 183 बार रक्तदान कर चुके हैं और 89 बार प्लेटलेट्स दान और एक बार प्लाज्मा दान कर चुके हैं। आज विश्व रक्तदाता दिवस पर डॉक्टर वर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि उनकी रक्तदान यात्रा वर्ष 1990 में एनसीसी कैडेट के रूप में शुरू हुई थी। पुत्र के जन्म के समय रक्त की आवश्यकता ने उन्हें इस महादान के महत्व का एहसास कराया, जिसके बाद उन्होंने जीवन भर रक्तदान करने का संकल्प लिया।
1: मैं 183 बार रक्तदान, 89 बार प्लेटलेट और एक बार प्लाज्मा दान कर चुका हूं। मैं समस्त देशवासियों को विश्व रक्तदाता दिवस पर बधाई देता हूं और विशेष रूप से उन रक्तदाताओं को, उन शिविर आयोजकों को जो रक्तदान के माध्यम से अमूल्य जीवन बचाने का काम करते हैं। रक्तदान एक पुण्य का कार्य है। रक्तदान का कोई अन्य विकल्प नहीं है। केवल एक स्वस्थ व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति को रक्तदान जैसा अमूल्य उपहार भेंट कर सकता है।
0: मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार का 12 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर ने पलवल में बुद्धिजीवी समाज से संवाद किया। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद में 148 पात्र लाभार्थियों को 100 गज के भूखंडों की रजिस्ट्री प्रदान की और हरियाणा पुलिस में कार्यरत फरीदाबाद निवासी और अशोक कुमार वर्मा पुलिस बलों में सर्वाधिक रक्तदान करने वाले कर्मियों में शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
2: हो गया इंतजाम।
3: किसका?
2: गुड्डी की फीस का।
3: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए।
4: आरबीआई कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

भैया ने रागनी सुनी, गायक कलाकार थे विक्रम सिंह फोगाट और उनके साथी, और भाई वो समय आज कम से और गीप घड़ी करें, देख लो कार्यक्रम का समय हो रहा समाप्त। अशोक भाई राजा जो सारे बाण भैया ने राम राम।

अभी आपने सुना है कार्यक्रम कृषि जगत, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, जिसे हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20।
1: दिस इज आकाशवाणी। We now bring you ball-by-ball commentary of the T20 cricket match to be played between India and Pakistan of the ICC Women's T20 World Cup 2026. Before that, listen to a special program, First Ball 20.
2: First Ball
3: 20. कुछ मुकाबले सिर्फ खेले नहीं जाते, उन्हें महसूस किया जाता है। कुछ प्रतिद्वंद्विताएं सिर्फ आंकड़ों में नहीं बसती, वे करोड़ों दिलों की धड़कनों में धड़कती हैं। और जब बात भारत और पाकिस्तान की हो तो हर गेंद एक कहानी बन जाती है, हर रन एक उम्मीद और हर विकेट एक उत्सव। आज बर्मिंघम की धरती पर महिला T20 विश्व कप में भारत के अभियान का आगाज हो रहा है। वनडे विश्व विजेता भारत आत्मविश्वास की नई उड़ान के साथ मैदान में है, जबकि पाकिस्तान की टीम अपने जज्बे जुनून से बड़ा उलटफेर करने का सपना लेकर आएगी। आसमान में तिरंगे की उम्मीदें हैं, मैदान पर खिलाड़ियों का हौसला और रेडियो के इस सफर में आपके साथ क्रिकेट का सबसे रोमांचक कारवां। मैं हूं आपका होस्ट आनंद श्रीवास्तव और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट साक्षी मांडवाल।
4: थैंक यू सो मच आनंद एंड अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल आवर लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। वी आर बैक ओवर हियर वंस अगेन ब्रिंगिंग यू द फर्स्ट गेम ऑफ द ऑनगोइंग वुमेन्स वर्ल्ड कप 2026, द बिग वन, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। जॉइनिंग मी ओवर हियर इन द स्टूडियो टुडे आर थ्री वेरी स्पेशल गेस्ट। इट्स अ प्लेजर टू इंट्रोड्यूस यू ऑल टू देम, टू ऑल ऑफ यू टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम ओवर हियर विद अस फॉर्मर क्रिकेटर वैशाली माथुर। नमस्कार, गुड इवनिंग।
5: गुड इवनिंग।
4: और दोस्तों उनके साथ हमारे साथ यहाँ पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर क्रिकेटर कर्नल भूपराज सिंह। गुड इवनिंग। नमस्कार कर्नल।
6: हेलो, गुड इवनिंग।
4: एंड सीनियर शुड आई से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, राइटर एंड ऑल्सो अ पर्सन हु वेरी पैशनेटली कवर्स एंड फॉलोज क्रिकेट एंड स्पोर्ट्स, मोना पार्थ सारथी जी। गुड इवनिंग मोना। नमस्कार।
7: नमस्कार, थैंक यू साक्षी।
4: टू क्विकली जस्ट स्टार्ट ऑफ द डिस्कशन वैशाली विद यू, आई स्टार्ट it first of all it feels good to have such a huge, or should I say majority women representation today over here, because it's the Women's World Cup. But before we go over there, we are headed straight towards the toss.
8: New Zealand internationals, I've got the skippers with me as well, Padmasana and Harmanpreet Kaur. Harman, I think you've got the coin.
9: Heads is the call. It's a tail.
10: We'll bat first.
8: Heads is the call. It has fallen your way. Well, you're very quick to say you're going to bat first. Why is that?
10: Well, I think it's a very good pitch to bat on, so we just thought let's bat and set decent total on the board.
8: First World Cup that you've come in as World Cup champions. I know it's a different format, but what does that do to a team? Does it sort of make you walk a little bit taller?
10: Well, I think we all are very excited. Last World Cup definitely given us a lot of confidence, and we just want to, you know, carry that confidence to this World Cup.
8: And the build-up has been quite immense, hasn't it? You beat Australia away, then you've come out to South Africa, then you're in England as well. Have you been pleased with the build-up?
10: Yes, definitely. We have break a lot of barriers, and now it's only about, you know, playing good cricket, and we are looking forward to that.
8: Okay, let's get into this team. You're going to bat first. You've had a little bit of tinkering in the batting lineup. Yastika's coming in, then Bharti's been in at different stages. Is one playing, both playing, or none at all?
10: Bharti's playing today, yeah. And Yastika's did really well, but today we thought of going with the Bharti.
8: Okay. And it's going to be a tough pitch for your bowlers. What does that bowling unit look like?
10: We are going with three spinners and two medium pacers.
8: Here we go. All the best today, Harman. I know you'll entertain.
10: Thank you.
8: Fatima, come on in. What would you have done if you had won the toss?
11: I think if we won the toss, we're going to bat first as well, because it looked like a batting track.
8: Okay. Talk to us. It hasn't been the best build-up in terms of performances as a team, but your batting unit, you've had two centurions. You've hit the fastest 50 ever in the game as well. Do you feel as if the batting unit is looking good?
11: Yeah, I think as a team, we are doing great in the batting and the bowling as well. So we know we have a good bowling unit, and so we just need to improve in the batting side, so we are good to now.
8: Okay.